0: वंदे मातरम।
1: सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सुबह की भीनी भीनी हवा के साथ, सूरज की किरण सुगंध के साथ आप सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, NC सुजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में मातृवंदना।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आपने सुनी। अब आपको सुनवा रहे हैं कलानाथ शास्त्री की शब्द रचना, आवाज अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।

अभी आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये गणेश वंदना। अब आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामानंद शर्मा की शब्द रचना, आवाज और संगीत शर्मा बंधु का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों बाद सुबह 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत का आनंद लीजिएगा सुबह 6:40 से। चिंतन और विचारों पर आधारित कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण होगा सुबह 7 बजे से। सुबह 7:05 से सुनिएगा कृषि संकेत, विषय पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं उन्नत पशुपालन की जानकारी, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर डीपी सिंह। सुबह 7:10 से सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

0: रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 7:20 से सुनिएगा साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर, संकलन व निर्माण मासूम आलम का, संयोजन व प्रस्तुति दीपक निषाद की। सुबह 7:05 से सुनिएगा संगीत सरिता।
1: परिणाम है और यही परमात्मा की भक्ति का उद्देश्य है।
2: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
0: सुबह 8:00 से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे सुबह 8:15 से। सुबह 8:25 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य, प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीली कोठी सागर। सुबह 8:30 से सुनिएगा बाल सभा। सुबह 9:00 से प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा बातें जंगल से। सुबह 10:00 से जिले की चिट्ठी रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 से सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सुबह 11:00 से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात का प्रसारण होगा, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं दोपहर 2:00 से सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। दोपहर समाचार सुनिएगा दोपहर 2:15 पर, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 से सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा शाम 5:02 से, रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:30 से सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। शाम 5:40 से सुनिएगा संगीत सरिता। शाम 6:00 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 6:30 से सुनिएगा सदाबहार गीत। शाम 6:45 से सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम। शाम 7:20 से सुनिएगा ग्राम सभा। रात्रि 8:00 से सुनिएगा चित्रपट संगीत। रात्रि 8:15 से डगर विकास की कार्यक्रम, ये रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8:30 से सुनिएगा संगीत सरिता। रात्रि 8:45 से समाचार संध्या का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। मन चाहे गीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:00 से। रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 से एशियन गेम्स 2026 की हाइलाइट्स, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, ये दोनों रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। श्रोताओं ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर है श्रीकांत पारगांवकर का।
1: ये प्रसारण आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को

पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजी हुई पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है, देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर था श्रीकांत पारगांवकर का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं गहरा दाग फिल्म से, शकील बदायूनी की शब्द रचना, संगीत दिया रवि ने।
1: स्वागत कर कामना करें कि ये दिन बहुत आनंदमय।

0: की पूर्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इच्छाएं तो
1: अभी आप सुन रहे थे गहरा दाग फिल्म से, आवाज थी आशा भोसले व साथियों की, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
0: उस खुशी को तलाशना होगा जो वहां है, वह खुशी जो परमानंद है।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
4: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
5: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
6: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
5: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
6: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
7: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं फंटूश फिल्म से किशोर कुमार की आवाज, गीतकार साहिब।

0: टोपी पलट के
1: के माध्यम से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को हम लोग बढ़ाएंगे।
2: अब आपको सुनवा रहे हैं गंगा की लहरें फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार मजरूर, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: कीटनाशकों का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाले सिंचाई के जल का
0: बड़ा दुख से हो राम शोर करें झन झन झन

千千千千。

इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही भूले बिसरे गीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार
1: सुबह सवेरे की सुनहरी वेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं जीवन में रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस कभी कभी हमें उन्हें तलाशने में थोड़ा समय लग जाता है। श्रोताओं, यदि आप प्रयास में लगे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो रास्ता आपको मिल ही जाएगा, भले ही उसमें थोड़ा समय क्यों ना लगे। हम सभी की जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, और कभी कभी तो हम खुद ही अपने भीतर से हारने लगते हैं। लेकिन मुश्किल समय हमसे ये ही पूछता है, तुम टूटोगे या रास्ता निकालोगे। हाँ जी श्रोताओं, मुश्किल समय हमसे यही पूछता है, तुम टूटोगे या रास्ता निकालोगे। जरा सोचें, अगर रास्ता पिछली कोशिश में ना मिले तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? नहीं श्रोताओं, हम दूसरा रास्ता तलाशते हैं, और अगर वो भी बंद मिले तो तीसरा रास्ता खोजते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मंजिल दूर है। ऐसे समय में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। हम रोज मिट्टी हटाकर ये नहीं देखते कि बीज कितना बड़ा है। हम उस वृक्ष को पानी देते हैं और भरोसा रखते हैं। ठीक वैसे ही हमारे प्रयास भी अपना समय लेते हैं। श्रोताओं, कभी कभी हमें लगता है कि आज हमारी जिंदगी में कुछ कठिन समय चल रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखें, ये समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ आधी जिंदगी का एक हिस्सा है। आज रास्ता दिखाई ना दे तो उसका ये मतलब नहीं है कि रास्ता है ही नहीं। हो सकता है जिस रास्ते को हम बंद समझ रहे वो ही हमें किसी नए रास्ते की ओर मोड़ रहा हो। ये ध्यान रखें कि जब चलते चलते थक जाएं तो थोड़ा रुक जाएं। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए गति से ज्यादा जरूरी होता है दिशा और विश्वास। तो हम भी इसी प्रयास के साथ कि हम मुश्किलों से ना घबराएं, हमेशा कोशिश करते रहें। रास्ता भले ही देर से मिले, लेकिन हम रास्ता खोजते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा उसे नहीं मिलती जो सबसे तेज चलता हो। कई बार जीत उसकी भी होती है जो गिरने के बाद भी उठकर चलता है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में नई शुरुआत जारी रखें। आज सुबह सुबह बस इतना ही, दीजिए इजाजत।

0: खिलाड़ियों से होगा एथलेटिक्स में।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
0: भारत ने अब तक प्रतियोगिता में
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में सुनिए पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं उन्नत पशुपालन की जानकारी। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर डीपी सिंह।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिना पोषक तत्व के चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता है, ना ही उससे उत्पादनता भरा कोई भी कार्य लिया जा सकता है। जैसे मनुष्य है अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर सकता, उसी तरह जानवर है स्वस्थ रखने के लिए और अच्छा दूध उत्पादन के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती रहती है, चाहे उनका उत्पादन दूध का हो या ना हो। क्योंकि अगर दूध का उत्पादन नहीं है, अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो जब भी वो दूध उत्पादन करेंगी तो उसका प्रभाव दूध उत्पादन पर हमेशा पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं जानवर जब गर्भावस्था में रहता है तो बच्चे के भ्रूण के विकास के लिए भी हमें पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। पोषक तत्वों में हर प्रकार के पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, खनिज लवण है, मिनरल्स है, इन सारी तत्वों की जरूरत पड़ती रहती है समय अनुसार। दाने देने हैं, उस दानों में हर दाने का मिश्रण होना चाहिए, जैसे खली है, चूनी है, चोकर है, ये सारी चीज़ें खनिज लवण है, नमक है, ये सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे हम अगर बात करें तो अगर हमारे पास कोई गाय है जो 8 से 10 लीटर दूध देती है तो उस गाय को हमें प्रतिदिन उसके शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए 2 से 2.5 किलो दाना देना आवश्यक है। अगर वो गाय उस समय दूध में है, जैसे अगर मान लीजिए अगर वो 6 लीटर दूध दे रही है सुबह शाम दोनों समय का मिला करके, तो हमें उसे 2.5 किलो राशन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है। तो सुबह शाम दूध के लिए एवं उसके शरीर की वृद्धि विकास के लिए हमें 5 केजी दाने की उसे प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह भैंसों में भी, कोई भैंस 10 लीटर दूध देने वाली है तो 2.5

0: से 3 kg उसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को वृद्धि विकास के लिए, और साथ ही उसका भी अगर दूध उत्पादन 6 लीटर है तो उसे भी 2.5 kg दूध उत्पादन के लिए पशु आहार की दाने की आवश्यकता रहती है। तो हम उसे भी 5 से 6 kg प्रतिदिन पशु आहार देंगे। साथ ही हमें उसे हरा चारा और भूसा देने की भी आवश्यकता पड़ती है। हमारा जानवर 10 लीटर दूध देने वाला अगर है तो निश्चित रूप से ही वो हमारा जानवर बड़ा होगा, शरीर भार में बड़ा होगा। तो ऐसे जानवर को 8 से 10 केजी प्रतिदिन भूसे की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही 20 से 25 केजी हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इन्हें दाने के साथ साथ भूसे की और हरे चारे का भी प्रबंधन करना आवश्यक है। इन सब चीज़ों के अलावा उन्हें स्वस्थ रखने के लिए समयानुसार उनका टीकाकरण, उनका कृमिनाशक दवाएं जिसे डिवर्मिंग कहते हैं, इन सब का भी समयानुसार करते रहना चाहिए व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारे जो पोषक तत्वों के साथ साथ उनका स्वास्थ्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर उन्हें पटार लग जाएगा, जू किलनी लग जाएगी, तो पटार और जू किलनी जानवर के शरीर से ही खून का अवशोषण करती हैं, खून को चूसती हैं, जिसका उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें उनको समय समय से पटार की दवाएं देनी चाहिए। और जैसा हम जानते हैं कि वर्ष में 2 बार वैक्सीनेशन टीकाकरण की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उन्हें टीकाकरण की भी समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए। इन सबों के साथ साथ भी रहने के लिए एक अच्छा आवास की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें चारा, दाना, भूसा, दवाओं के अलावा एक अच्छा आवास भी होना चाहिए। अच्छे आवास का मतलब है जानवर का सूखा होना चाहिए, मौसम के अनुसार होना चाहिए। अगर बारिश है तो फर्श गीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। वर्षा ऋतु के अलावा अगर ठंड है तब भी हमारा फर्श नहीं गीला होना चाहिए, वर्षा ऋतु में भी नहीं गीला होना चाहिए। हमने प्रायः देखा है कि जानवर जो है कीचड़ में खड़े रहते हैं। तो इन सब तरह की अगर भी व्यवस्थाएं अगर नहीं करेंगे तो इस सब का भी स्वास्थ्य पर और दूध उत्पादन पर असर पड़ेगा। इन सब के साथ साथ हमारे जानवर को पानी भी साफ एवं स्वच्छ की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है कि जितना ही गंदे पदार्थों का सेवन जानवर करेगा, उसके शरीर में जाएगा, आपके पटार की समस्या हमेशा उसमें बनी रहेगी। क्योंकि पटार के जो अंडे हैं, लार्वा है, वो कहीं ना कहीं हमारे खेतों से पानी के माध्यम से ही हमारे जानवरों के शरीर में जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उन्हें पानी भी स्वच्छ रूप से पिलाना है। साथ ही उन्हें ऐसी जगहों पर बांधना है, मौसम के अनुसार रहे, गर्मी है तो वहाँ हवा बनी रहे, ठंड है तो ठंड से भी उनका बचाव हो, बारिश है तो पानी से बचाव हो। दुधारू जानवर हैं, चाहे गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सभी का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत। विषय था पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं उन्नत पशुपालन की जानकारी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर डीपी सिंह। हम बोल रहे आकाशवाणी के सागर केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है। देश का कोई भी सच्चा प्रेमी हिंदी का त्यार नहीं कर सकता। दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, भोपाल के मास्टर प्लान में प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में सेवा का संदेश देने वाले कार्यक्रमों के साथ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और बैंकों की कल से 3 दिन की हड़ताल के कारण आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 138वां एपिसोड होगा। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज

0: एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में अधोसंरचना विकास को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कल इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा कि भोपाल के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान का प्रारूप जारी हो गया है, यह कई वर्षों से लंबित था।
1: हमारी राजधानी भोपाल में 95 में पहली बार मास्टर प्लान का प्रकाशन हुआ था, कई कारण से लंबित रहा है, लेकिन 20-22 साल से उसके नए प्लान के प्रकाशन की आवश्यकता थी। हमने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन भी किया है और राजधानी भोपाल को अपने भविष्य के आगे बढ़ने के नए प्लान के आधार पर उस प्लान का ड्राफ्ट का पब्लिकेशन भी कराया है।
0: इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि मास्टर प्लान भोपाल की प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, सुगम मोबिलिटी की दृष्टि से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि भोपाल विकास योजना के प्रकाशित प्रारूप पर नागरिक अपनी आपत्ति एवं सुझाव दे सकते हैं। मास्टर प्लान ड्राफ्ट के 4 प्रमुख आधार स्तंभ रखे गए हैं, जिनमें प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण, आधुनिक दृष्टिकोण एवं नागरिक हितैषी नियोजन, सुधारोन्मुख एवं परिवर्तनकारी नियोजन और आत्मनिर्भर तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाले सतत विकास पर केंद्रित किया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्वदेश दर्शन के दूसरे चरण, प्रसाद योजना, क्रूज पर्यटन और पर्यटन कौशल विकास जैसी पहलें नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों को अनुभव बेहतर कर रही है और रोजगार के अवसर भी बढ़ा रही है। विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच राज्य के ही एक पर्यटन स्थल भेड़ाघाट को लेकर अच्छी खबर है। स्वदेश दर्शन 2.2 योजना के तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट लम्हेटा घाट में देश का पहला जियो पार्क और विश्व स्तरीय जियोलॉजिकल म्यूजियम विकसित करेगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि 87 करोड़ रुपए की परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। परियोजना में जियोलॉजिकल म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर, 6 गैलरियां, 130 से अधिक प्रदर्शक, डायनासोर पार्क, फॉसिल गार्डन विकसित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गुना जिले में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं खंडवा, मंदसौर और नीमच में सेवा संकल्प अभियान के तहत कल मेरे सपनों का भारत विषय पर जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्योपुर में वड़नगर, वाराणसी जल जन सेवा संकल्प यात्रा का खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्वागत किया। अलीराजपुर में फलिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नर्मदापुरम में नमो सेवा अनकही कहानियां कार्यक्रम के तहत सिडनी मालवा के गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक का मंचन और निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आगर मालवा में सेवा फर्स्ट राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज के तहत 7 अक्टूबर को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा 2026 के तहत कल पुरस्कार वितरण समारोह एवं हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हास्य कवि सम्मेलन में दीपक धनादन, अर्जुन सिंह चांद, प्रियंका मिश्रा, श्रृंगार कटनी और कुलदीप रंगीला ने अपनी रचनाओं पर प्रस्तुति दी। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।
3: राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में हमारे भोपाल रेल मंडल में काफी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें कविता की प्रतियोगिता थी, इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता और डिफरेंट कॉम्पिटिशन भी किए गए। करीब 75 टोटल हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे जिनको अवार्ड दिया गया और इसी उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और इसमें सभी को हिंदी और राजभाषा के प्रसार के लिए भी सबको एक प्रोत्साहन दिया गया।
0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक

प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक भार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय भी लिया है। अब करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेलों 2026 में आज भारत की नजरें स्क्वैश पर रहेंगी। महिला और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अनहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर डेकोथलॉन के अंतिम दिन बढ़त के साथ उतरेंगे और स्वर्ण पदक जीतने की कोशिश करेंगे। वहीं एमसी सोजन और पारुल चौधरी भी स्वर्ण पदक की दौड़ में होंगी। लंबी कूद के फाइनल में शैली सिंह भी हिस्सा लेंगी। अनिमेश कुजूर 200 मीटर के फाइनल में और सर्वेश कुशारे ऊंची कूद के फाइनल में उतरेंगे। प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक में हिस्सा लेंगी। वहीं मुरली श्रीशंकर लंबी कूद के क्वालिफिकेशन में उतरेंगे। शूटिंग में मनु भाकर महिला 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लेंगी। ये टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, उन्नति हुड्डा और युगल जोड़ियां ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद तथा ध्रुव कपिला, तनिषा क्रॉस्टो पदक से एक जीत दूर हैं। वहीं क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला वनडे मैच आज दोपहर 2 बजे तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टी20 सीरीज का एक मैच 11 अक्टूबर को इंदौर में भी खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संजय गांधी अस्पताल में रोगियों के उपचार की जानकारी लेते हुए डॉक्टरों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। शिवपुरी सर्किट हाउस में कल राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग की विशेष जनसुनवाई में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई करेंगी। सागर के आपदा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने संबल योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण किया। धार जिले के धर्मपुरी में कल मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड के तहत बैतूल जिले के चयनित 20 छात्र छात्राओं का दल गुजरात भ्रमण के लिए रवाना हुआ। छतरपुर में सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर चौका गांव के पास भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। और 2 दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह एवं संगीत संध्या का आयोजन आज से इंदौर में किया जा रहा है। समारोह में सुविख्यात संगीत निर्देशक शांतु मोहित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। वहीं अमर लता हमारी लता विषय पर संगीत संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण मासूम आलम का, संयोजन व प्रस्तुति दीपक निषाद की।
1: गागर में सागर। श्रोताओ, एक बार फिर हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर हुए हैं आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर का ये ताजा तरीन अंक। आइए इसमें लेते हैं सबसे पहले सेगमेंट सागर मंथन का जायजा। सागर मंथन। इसमें सबसे पहली जानकारी है विश्व कृतज्ञता दिवस के बारे में। 21 सितंबर दिन सोमवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में विश्व कृतज्ञता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव जी ने इस दिवस के बारे में अपने वक्तव्य में कहा,
2: कृतज्ञता की बात जहाँ तक है, देखिए सीधी सी बात है कि हम नहाने जाते हैं, नल हमने चालू किया, साबुन वगैरह लगा लिया और फिर नल चले जाए, फिर क्या होता है, हम एकदम इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि नल कैसे चले गए या ये कैसे हो गया। तो हमें क्या हक है चिल्लाने का, क्योंकि आज से पहले हम कई दिनों से नहाते आ रहे हैं, नल बराबर चल रहे हैं। क्या हमने कभी कृतज्ञता व्यक्त की नल के प्रति कि नल चल रहा है, पानी आ रहा है? तो जब हम जो हो रहा है, सीधी सी बात है, कृतज्ञता

0: संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है, तो हम शिकायत के मूड में रहते हैं, कृतज्ञता के मूड में कम रहती है। यही कारण है कि बहुत सही बात कही है कि कृतज्ञता आपको अमीरी की ओर ले जाती है और शिकायत आपको गरीबी की ओर ले जाती है। लेकिन अगर आप कृतज्ञ नहीं रहते तो नेगेटिविटी तो आपके अंदर आनी है, क्योंकि ये हमारा गुण है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर इनबिल्ट है। मैं जब घर से निकलता हूँ डिपार्टमेंट के लिए, तो जैसे ही निकलता हूँ तो सबसे पहले कार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ किसकी वजह से मैं पहुँच जाऊँगा, और उसके बाद जब गेट पर जो चौकीदार बैठा रहता है मेन गेट पर उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ किसकी वजह से हम कॉलोनी में सुरक्षित है।
1: और अब अगली जानकारी है, सागर जिले में यातायात और परिवहन को और सुगम और सुचारू बनाने के लिए जिले में सड़कों को जिला मार्ग बनाया जाएगा, अर्थात ये मार्ग जिले की मुख्य सड़कों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें है सागर से लिधोरा सानोदा कर्रापुर मार्ग जो कि लगभग 30 किलोमीटर का है, खिमलासा रजवास मार्ग जो लगभग 26 किलोमीटर का है, और जरुआखेड़ा जलंधर राहतगढ़ मार्ग जो लगभग 26 किलोमीटर का है। इसके बाद अब है अगली जानकारी 11वें आयुर्वेदिक दिवस के बारे में। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के गणित एवं सांख्यिकी विभाग में आयुर्वेद चिकित्सा आधारित स्वस्थ जीवन शैली पर व्याख्यान हुआ। इस संबंध में हमने बात की जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी से।
2: जो इस बार 11वीं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में जो थीम थी वो थी स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, तो इसके लिए पूरे जिले भर में आयुर्वेद के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें जिला स्तरीय जागरूकता शिविर हुआ जिला चिकित्सालय में, आयुष विंग में, और अन्य जो शहरी क्षेत्रों में डिस्पेंसरियां हैं आयुष की, उनमें कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनमें पौधों का वितरण किया गया एवं स्वस्थ जीवन शैली कैसे हमें आयुर्वेद से जीना है, कैसे हम स्वस्थ रहें, इसके बारे में बताया गया, समझाया गया। औषधीय पौधों से संबंधित जानकारियां दी गई, औषधीय पौधों को कैसे बचा के रखें, इन सब चीजों के बारे में बताया गया, और इसमें पादप पौधों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, और जो स्कूलों के बच्चे हैं उनको पौधों का महत्व समझाया गया और स्वस्थ कैसे रहना है ये सब चीजें बताई गई। और बहुत से महाविद्यालयों में भी हम लोगों ने रैली, प्रभात फेरी, जनसंवाद आदि किए गए, और चित्रकला, पेंटिंग आदि के द्वारा इनको समझाया गया बच्चों को।
1: अगली जानकारी है सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई बस सेवा के शुभारंभ के बारे में। 25 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने हरी झंडी दिखाते हुए सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई बस सेवा का शुभारंभ भोपाल से किया। ये सेवा 7 शहरों के लिए 351 से अधिक बसों के लिए संचालन से संबंधित है। ये सुगम बस सेवा अभी शुरुआती तौर पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, देवास, भिंड और कटनी के लिए है। अब जानकारी है गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सागर में अभिव्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा एवं कवि सम्मेलन के आयोजन की। इस मुशायरा और कवि सम्मेलन में सागर के स्थानीय एवं बाहर से पधारे शायरों एवं कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हरदोई से आई कवित्री पल्लवी मिश्रा जी की आवाज में ये रचना।
3: ऐसे कैसे हृदय से निकल जाऊंगी, हाथ छोड़ोगे तो मैं फिसल जाऊंगी।

0: सागर के शायर आदर्श दुबे,
1: गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा, किसी की याद में आंसू नहीं बहाऊंगा, और तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की, मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा।
0: पटियाला से पधारे कवि अश्विनी मित्तल जी,
2: टूटते टूटते मैं यूं टूटा, टूटने का रिकॉर्ड टूट गया, उस लड़की को जान बनाकर खुश था मैं, पत्थर को भगवान बनाकर खुश था मैं।
3: वाह वाह वाह वाह,
2: तन्हाई थी और ऐसी तन्हाई।

0: क्या बात,
1: दीवारों पर कान बनाकर खुश था मैं।
0: क्या बात।
2: इसके बाद अगली जानकारी है, तहसील केसली सागर में ग्राम केवलारी में वार्षिक आम बैठक एवं कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी की। इस संगोष्ठी का आयोजन 26 सितंबर को हुआ। इस संगोष्ठी पर श्री धनी राम गुप्ता, संचालक केसली सागर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड केवलारी कला ने आकाशवाणी सागर को बताया।
3: आज 26 सितंबर 2026 में केसली सागर एफपीओ की वार्षिक बैठक एवं साथ ही किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन एफपीओ परिसर केवलारी में किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनाने की एक योजना लागू की है, जिसे 10,000 एफपीओ निर्माण एवं संवर्धन योजना का नाम दिया गया है। ये योजना इसलिए शुरू की है कि जिससे छोटे और सीमांत किसान एक ही छत के नीचे अपने हिसाब की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो हमारा एफपीओ इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के कार्य कर रहा है। एफपीओ की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें पूरा लेखा जोखा विगत वर्ष का किसानों को बताया जाता है, किसानों से सुझाव लेकर अगले वर्ष के लिए नई नीतियां बनाई जाती है। मतलब सीधी सी बात है, किसानों का, किसानों के लिए और किसानों के द्वारा एक ऐसा संगठन जो संचालित होता है सहकारिता के सिद्धांतों पे, उसी को लेके एफपीओ काम कर रहे हैं।
2: उप संचालक कृषि श्री राजेश त्रिपाठी जी,
4: आज हम लोग ग्राम केवलारी में विकासखंड केसली में केसली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड किसानों के संगठन में हम लोग यहां पे उनका आम सभा की बैठक थी, जिसमें हम जिले से कई अधिकारी लोग यहां पे आए और बहुत सारे किसान भाई भी यहां पे सैकड़ों की संख्या में किसान भाई उपस्थित थे। इनके बीच में पूरा एफपीओ को माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा अनुसार जो 10,000 एफपीओ देश में बनाए जा रहे हैं, संगठित हुए हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए, इस पे पूरी तरह से यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया गया था। साथ में इनका विगत वर्ष में किस तरह से काम किए हैं उसके बारे में भी परिचर्चा की गई, और शासन के नियम परिधि में रहते हुए इसको अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित किया जाए, किसान भाइयों को कैसे सशक्त किया जाए और किसान शेयर होल्डर्स को कैसे इसमें जोड़ा जाए, इन सब विषयों के बारे में भी एक डिटेल चर्चा हुई। किन किन योजनाओं से किस तरह का लाभ इन किसान भाइयों के यहाँ पे मिल सकता है।
2: इसके बाद एक और जानकारी, जो कि है डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में आयोजित हिंदी माह के तहत काव्यांजलि कार्यक्रम के बारे में। इस कार्यक्रम में नवीन कांगो जी, जो कि विश्वविद्यालय सागर से हैं, उन्होंने अपनी इस रचना से उपस्थित श्रोताओं और दर्शकों का मन मोह

0: और श्रोताओं, अब है हमारा अगला सेगमेंट शिखर की ओर।
1: शिखर की ओर।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर के तहत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है शिखर की ओर। कार्यक्रम शिखर की ओर में हम आपको जनहितैषी जन उपयोगी जानकारी हमेशा देते आते हैं, और आइए इसी तारतम्य में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं नो अब्यूज डे के बारे में। तो इस संबंध में आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैम, आप अपना परिचय दीजिएगा।
3: जी, मैं डॉक्टर वंदना गुप्ता सामाजिक क्षेत्र में विगत 32 वर्षों से सागर और पूरे राष्ट्र में कार्य कर रही हूँ।
2: देखिए, एक शब्द है नो अब्यूज डे, तो इस संबंध में

0: आपको विचार कैसे आया कि इस संबंध में इस पर चर्चा की जाए, इस पर काम किया जाए?
1: मैं गालियों के लिए लोगों को छात्र जीवन से ही टोकती टोकती थी, संकल्प नहीं दिला पाती थी, रोकती और टोकती थी, लोगों को समझाती जरूर थी। फिर लगा हमें कि नहीं, इसको एक अभियान के रूप में लो, लोगों को जन जागरण बहुत आवश्यक है। तो तभी फिर जन जागृति करते हुए भी लगा कि आप तो रोज बोलते जा रहे हो, फिर विचार आया कि नहीं, एक दिन संकल्प का होना चाहिए, जिस दिन पूरे देश में सब जगह एक साथ मैसेज जाए कि नहीं, एक दिन अगर हम उसको वर्ष में बनाते हैं तो हम उसकी तैयारी भी करते हैं, दिमाग में रहता है। इसी श्रृंखला में हमारे देखिए इतने सांस्कृतिक त्यौहार हैं, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार भी है, तो वो हमको एक संकल्प दिलाता है हर समय। चाहे हमारा 15 अगस्त हो तो हमको आजादी का संकल्प वो याद आता है। तो इसलिए इसको जब हमने नो अब्यूज डे को संकल्प के रूप में लिया और उसको 17 सितंबर हमने एक दिन संकल्प का रखेंगे जो जन जागृति करेगा हमारे में भी और समाज में भी।
0: तो इसमें किस प्रकार से आप लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और उनको समझाइश देंगे?
1: जो जहां खड़ा है, हर जगह हमें नहीं पहुंचना है, हम सबको पहुंचना है। तो हम जहां भी खड़े हैं, जिस कार्यालय में हैं, जिस परिवार के अंदर हैं, हम परिवार में गालियां दी जा रही हैं तो परिवार वाले, आज घर के लोग टोकेंगे, देखो आज 17 सितंबर है, चलो संकल्प लो, अब कभी जीवन में गाली नहीं दोगे। मालूम पड़ा वो कार्यालय में गया, जो व्यक्ति बोलता है ऐसा, अगर कार्यालय में नो भी उसके बोर्ड लगे हैं तो वहां पे भी होगा, अब आज से कोई यहाँ गाली नहीं देगा, चलो सब संकल्प लेते हैं। विद्यालय में है, रोज शिक्षक और विद्यार्थी जब संकल्प लेंगे तो जब उसमें हम बोलेंगे कि हाँ अब आपको संकल्प लेना है कि अब आप ऐसा नहीं बोलेंगे, तो वो एक स्ट्राइक करेगा बार बार, तो लोगों को लगेगा हम ही ऐसा गलत बोलते हैं, ऑफिस में हम ही ऐसे गलत हैं, तो हमें सुधरना चाहिए। तो ये मुहिम इस तरीके से दिमाग पे स्ट्राइक करके आपको जगाती है, तो इसलिए ये सक्सेस है। और 17 सितंबर इसलिए रखा गया क्योंकि विचारों की शुद्धि के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। इसमें हमारा जो उद्देश्य है, जो वैचारिक स्वच्छता अभियान का है, कि स्वच्छ भारत मिशन का ये भी संकल्प होना चाहिए, माँ बहन बेटी गालियाँ अब बंद होना चाहिए।
0: हमें ये भी बताइएगा कि क्या ये अभियान केवल सागर तक सीमित रहेगा?
1: नहीं, वो तो सागर के संभाग में तो पूरा हो ही चुका है, ये इसके साथ ये सीमित यहाँ नहीं है, ये तो पूरे भारत में हमने अनेकों राज्य में इसको हम करते आ रहे हैं।
0: देखिए, हमारे समाज में अपशब्दों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अपशब्द जो है एक दिनचर्या की एक गतिविधि के रूप में शामिल हो गया है। गाली गलौज लोग देते हैं, इस संबंध में क्या कहीं हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो इस प्रकार के अपशब्द बोलता है?
1: देखिए, जो इस प्रकार के अपशब्द बोलता है उसके लिए तो कानून में धारा बनी है।
0: क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा सहायता, कुछ नंबर या कुछ ऐसी केंद्र है या कुछ जगह है या कोई ऐसी प्रक्रिया है कि आपसे कांटेक्ट कर सके और आपसे मदद मांग सके?
1: हमको सिर्फ जागरूकता अभी लानी है, क्योंकि आप अभी कौन सा व्यक्ति सामने आपके खड़ा है, अगर वो नशे में धुत होकर गाली दे रहा है तो बात यह है कि हम किस जगह पे, कहाँ पे, कैसा माहौल है और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जन जागृति के द्वारा हम प्रभाव ला सकते हैं, उनको सुधारा जा सकता है। एहसास जब तक नहीं होगा अंदर से, हम वो काम करना रोकते नहीं है। आप खुद भी देखिए, अगर हमको गलत काम से कौन रोकता है, हम स्वयं रोकते हैं ना। तो इसी तरह जब हम रोकेंगे, टोकेंगे, जगाएंगे लोगों को, तो वो स्वयं को रोकने वाले बन जाएंगे, स्वयं को टोकने वाले बन जाएंगे, स्वयं को संकल्प दिलाने वाले बन जाएंगे। इसी से समाज का शुद्धिकरण होगा। और आपका कहना है कि बहुत अधिक हो गया है, तो देखिए एक कहावत है, पानी अब सर के ऊपर निकल गया। तो सर के ऊपर निकल गया मतलब डूबने की स्थिति आ रही, तो क्या करा जाएगा? बचाव के लिए हम स्थान तो ढूंढेंगे ना, उसका प्रयास तो करेंगे पानी निकाला जाए, तो उस पानी में हम डूब ना जाए गंदगी में, उसको निकालने का ये प्रयास वैचारिक स्वच्छता अभियान है जो वर्ष पर्यंत चलेगा। सभी ऑफिस में नो अब्यूज लगा रहेगा, सभी में QR कोड स्कैन करके आप उसमें से खोलेंगे तो 10 क्वेश्चंस उसमें निकलते हैं। जो भी व्यक्ति उस क्वेश्चंस को भर लेगा, उसके उत्तर दे लेगा, उसके बाद वो मानसिक रूप से इतना परिपक्व हो जाएगा कि उस भाषा का प्रयोग जीवन में भी नहीं करेगा।
0: आपने आकाशवाणी सागर के लिए अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं भी आकाशवाणी सागर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने वैचारिक स्वच्छता अभियान को प्रमुखता से लिया और समाज में एक विराट संदेश देने के लिए आज मुझसे साक्षात्कार किया।
2: और अब लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, सागर के मोती।
3: सागर के मोती।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर, इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सेगमेंट होता है सागर के मोती। सागर के मोती में हमेशा हम आपसे ऐसे कलाकारों को मिलवाते हैं, ऐसी प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते हैं जिनमें कुछ खास होता है और जिसके बल पर वो दुनिया में अपना नाम कमाते हैं या हमें कुछ प्रेरणा देते हैं। इसी तारतम्य में आइए आज हम बात करते हैं एक कवित्री से, लेकिन सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा।
4: मेरा नाम रक्षा चढ़ार है।
0: आप रहने वाले कहाँ के हैं?
4: सागर।
0: देखिए, आप कवित्री हैं और कविताएं लिखती हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यही होगा कि कविताएं लिखने के लिए प्रेरणा आपको किससे मिली?
4: मेरे एक दोस्त है, उन्हीं से मिली है।
0: चलिए देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ आपकी लिखी हुई कविताओं के बारे में तो हम बात करेंगे। कुछ कविता आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए। कुछ एक
4: कि वो अपने अनकहे अनसुने जज्बात लिए फिरता है, एक शख्स अनजान शहर में अपनी जान लिए फिरता है, उसे पता है कि उसकी शान बहुत है जमाने में, चुपचाप सा वो शख्स बिना दिखाए निशान लिए फिरता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। कितने अच्छे शब्दों का आपने चयन किया है, बहुत ही अच्छे लफ्ज हैं, और आपने जिस अंदाज से पढ़ा है तो हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा, एक चीज इसमें ये होती है कि जो थॉट होता है, हम जो सोचते हैं, तो थॉट कैसे आते हैं आपके माइंड में?
4: ये जो जिंदगी में जो भी चलता रहता है, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, जो भी, वही देख के मेरे मन में ये थॉट्स आते हैं।
0: तो उनको शब्दों में पिरोना तो काफी मुश्किल होता है, तो क्या किसी से आपने सीखा है, किसी को अपना उस्ताद बनाया है?
4: हाँ।
0: तो किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं जब लिखने बैठते हैं? ये तो आपने एक बहुत अच्छी गजल सुनाई और कविता भी आप लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखते हैं?
4: बस वो अपने अंदर से ही दिल में और मन में आता है, ऐसा कुछ अलग से नहीं सोचते हैं, जो आता है बस वो लिख देते हैं।
0: एक बात और होती है, जो शायर होता है, कवित्री होती है, कविता पढ़ते हैं, तो उनमें सुर का समावेश भी होता है, तो कभी सुर में भी पढ़ा है आपने?
4: हाँ, है। कि शाम ढल ना सकी, रात भी आ गई, तू भी जाना सकी, याद भी आ गई, रात की चांदनी में है यादें बहुत, रात जाना सकी, सुबह फिर आ गई।
0: बहुत ही प्यारी आवाज और बहुत ही अच्छे तरन्नुम में आपने पढ़ा है। और अंत में चलते चलते हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जैसे आपने जब शुरुआत की, तो शुरुआत किस तरह से वो लोग करें?
4: ये बस अपने भाव हैं, जो आपके अंदर भाव हैं, आप उन्हीं को अपने उतार सकते हैं शब्दों में। कुछ दिल के जज्बात होते हैं, उसके लिए कुछ अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, बस ये है कि वो अपने अंदर से ही आता है।
0: आपने आकाशवाणी सागर के लिए अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद, आपका भी आभार।
2: अब बारी है सेगमेंट माटी की महक की।
3: माटी की महक।
0: श्रोताओ, आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर में आप और जाना थो हमारा एक सेगमेंट होते है माटी की महक। माटी की महक में हमेशा हम आप औरों के सामने कोनो न कोनो ऐसे कलाकार को लेके आते हैं जिनमें कछु न कछु ऐसी बात होत है कि लोग उनको सुनत हैं, वो कछु तो गुनत भी हैं, और उनको सुन के हमें अच्छो भी लगत है, हमें ऐसा लगत के हम भी ऐसा कर सकते हैं। मने उनको जा कला कैसे मिली, एक के पीछे उनकी कितनी मेहनत रही है, जा हमें पता नहीं चलत। पता कबे चलत है? जब हम उनसे बात करते हैं। तो आज ऐसे ही हमारे एक लोकगीत गायक हैं, तो आप सबसे पहले हम उनसे परिचय ले लें, फिर उसके बाद अपन बात करें। तो सबसे पहले आप अपनो परिचय दो।
5: भैया, हमारा नाम माधव प्रसाद चढ़ार है, हम तिलक गंजवाड़ सागर में रहते हैं।
0: माधव जी, आपको हमारे कार्यक्रम में खीबई खीबई स्वागत है। अब देखो, अपन तो कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके, मैंने देखो गणेश जी को समय चल रहा है, उत्सव चल रहा है, तो अपनी बात शुरू करने से पहले काय ने अपन रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी को याद कर ले।
6: अरे गणपत नाम जरूर भजो रे मनो,

0: वाह भैया वाह भैया, खीबई सुंदर, खीबई सुरीलो जा गणेश वंदना आपने हमारे श्रोताओं को सुनवाई। और देखो शुरुआत बहुत अच्छी भई है। अब हम बातें कर रहे हैं आपसे, आप कितने समय से इस क्षेत्र में हैं?
1: हमें लगभग 40 से 45 साल इस क्षेत्र में हो गई। हम बहुत छोटे से थे, जब से हमारी मंडली में हम जाते, मंडली के माध्यम से आज हम इतने तक पहुंचे। अभी भी हम पे बनत तो कछु नहीं है, लेकिन प्रयास करत रहते हैं। संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जो उनको जीवन में कभी पूर्ण नहीं कर सकत कोई, कितना होए, लेकिन अपने तरीके से आदमी प्रयास करत रहते। हम पहले मंडली में जाते, झूला तारे में जाते। हमारी मंडली में पुराने सदस्य थे, उनमें से बहुत सारे सदस्य आज के समय में अब है नहीं, उनके देहांत हो गए, लेकिन उनकी सीख के कारण आज हम इतने तक पहुंचे हैं। उनमें हमारे एक पूरन लाल पटेल जी थे, प्रेम नारायण प्रजापति जी बाबू जी थे, वर्तमान में संतोष साहू जी हैं, संजय साहू जी हैं। इन सब के साथ में बैठ के थोड़ा सीखत आज थोड़ा बहुत बनन लगो। और आज हमारी मंडली भी चलाते हैं हम, गणेश जी विराजमान हैं तो जगह जगह आज प्रतिदिन कहीं ना कहीं बुलौआ रहते हैं, तो वो गणेश पंडालों में जा रहे हैं। और एक साथ में हमारी जो मंडली है, बाधिकांशता सारे बुंदेली जो भी कार्यक्रम है, चाहे देसी भक्तें होएं, चाहे देसी फागे होएं, चाहे भजन होएं, देसी सुंदरकांड होए, हमारी मंडली में सदस्य जो है ऑलराउंडर हैं लगभग।
0: अब देखो आपने अपने मंडली की बात करी, तो मंडली में आपके जो हो रहे संगी साथी जुड़े भाई हैं, तो मंडली के साथ एकाध गायन हो जाए तो का सुना रहे आप?
1: अब हम पेटी पे एक देवी गीत भगत गा रहे हैं।

0: और अंत में है सेगमेंट इस सप्ताह चर्चा में।
1: इस सप्ताह चर्चा में
0: हैं 72वें फिल्म पुरस्कार जो के हैं 2024 की फिल्मों के लिए और साथ ही चर्चा है एशियन गेम्स 2026 की। सबसे पहले चर्चा 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। 22 सितंबर 2026 को गुजरात के एकता नगर में स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास इस समारोह का आयोजन हुआ। इतिहास में पहली बार ये प्रतिष्ठित समारोह नई दिल्ली के बाहर आयोजित हुआ, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी

0: इन्हें संबोधित किया और विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म आर्टिकल 370 के लिए निर्देशक सुहास जांबले को और इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामिनी गौतम को पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए पुरस्कार से नवाजा गया, तो वहीं अभिनेता अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब चर्चा एशियन गेम्स पर। जापान के आइची नागोया शहर में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व में भारत का नाम रोशन किया, जिसमें महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका टीम को हराकर प्रतियोगिता का पहला स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में सुरुचि सिंह और कमलजीत ने भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए सिल्वर मेडल जीता। शॉटगन शूटिंग मिक्स्ड में अनंतजीत और परिनाज ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी तरह रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने डबल स्कल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 10,000 मीटर दौड़ में सीमा कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और 26 सितम्बर तक भारतीय खिलाड़ियों का रिजल्ट ये रहा। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। मेंस मैराथन में सावन बरवाल ने सिल्वर मेडल हासिल किया, तो वहीं शूटिंग में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम इवेंट में आशी चौकसे, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद की टीम ने रजत पदक हासिल किया। तो श्रोताओं, ये था हमारी आकाशवाणी सागर की साप्ताहिक पत्रिका गागर में सागर का ये अंक। इस अंक से विदा लेने से पहले आइए हम आपको बताते चलें, इस कार्यक्रम का संकलन निर्माण और वाचन स्वर मासूम आलम का, संयोजन और प्रस्तुति दीपक निषाद की है। और इसी के साथ इस अंक से हम लेते हैं विदा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। गागर में सागर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण था मासूम आलम का, संयोजन व प्रस्तुति थी दीपक निषाद की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर की शब्द रचना, संगीत शंकर एहसान लॉय का, गायक कलाकार हैं वीवा और क्लिंटन।

0: अभी आप सुन रहे थे जावेद अख्तर की शब्द रचना, आवाज थी बीबा और क्लिंटन की, और अब वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आकाशवाणी सागर से इस वक्त आप सुन रहे हैं संगीत सरिता। अब आपको सुनवा रहे हैं मेड इन इंडिया एल्बम से अलीशा चिनॉय की आवाज। संगीत दिया है बिड्डू ने।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
4: In particular,

0: should be exposed and should be countered.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेय ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम

0: जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
1: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
3: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई।

0: और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है, पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं बलराम यादव की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे बलराम यादव की आवाज में ये लोकगीत, और अब वक्त हुआ एक छोटे से अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
6: सच?
5: हाँ हाँ सच, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा, और जल्दी से जल्दी एचआईवी की जांच भी करवाना, क्योंकि एचआईवी का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
6: डॉक्टर, अगर एचआईवी पॉजिटिव आए तो
5: बिना कोई देरी किए एआरटी केंद्र से एआरटी ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
6: डॉक्टर, हम आज ही जाकर एचआईवी की जांच कराते हैं,
5: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
8: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
7: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
8: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
7: PIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
9: बनिए जागरूक ग्राहक, और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें PIS।

Let's get up. अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आकाशवाणी सागर से। इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं राम मूर्ति तिवारी की आवाज में ये लोकगीत।

0: इस अंतिम प्रस्तुति के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। प्रायोजक वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल 38 कैंट पीली कोठी सागर।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस प्रोग्राम का ये अंक लेकर हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं के लिए। स्वीकार कीजिए साहिबा का नमस्कार। और आज हमारे साथ है, जानते हैं उनका परिचय।
4: मैं विजय सिंह बघेल, मेरी बेटी नर्सरी से 12th क्लास तक वात्सल्य स्कूल में पढ़ी है
3: जी। तो एक अभिभावक के नाते हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब नर्सरी से आपकी बच्ची पढ़ी, आपने नर्सरी के वक्त ये क्या देखा कि हम वात्सल्य को ही चुनेंगे?
4: नर्सरी प्राइमरी सेक्शन बहुत अच्छा था
3: जी,
4: जो उनकी मम्मी जी चलाती थी श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव जी,
3: जी।
4: उनका मैनेजमेंट, पढ़ाई लिखाई का तरीका
3: जी,
4: बहुत बच्चों के प्रति बहुत अच्छा था। बच्चों के ऊपर फुल ध्यान दिया जाता था, जिसमें कभी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का हतोत्साहित वगैरह नहीं किया जाता था। स्कूल आते समय बच्चा खुशी खुशी आता था, स्कूल जाने के बाद थोड़ा सा उसको लगता था कि हम स्कूल से घर जा रहे हैं, फिर लेकिन सुबह उठ के तैयार होकर स्कूल आती थी
3: जी जी जी। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, यानी जहाँ बच्चों को एक भय होता है, छोटे बच्चों को खासकर, कि हम स्कूल जा रहे हैं तो वो डरते हैं, आप बता रहे हैं उल्टा, वो घर जाते दुखी हो रही है और आते वो खुश हो रही है। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो फिर कैसा अनुभव रहा आपका?
4: उसका हमारा अनुभव शुरू से नर्सरी से लेके 12th क्लास तक उसका एजुकेशन रैंक होल्डर रही है स्कूल में, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में आती थी और उसे स्कूल की तरफ से भी बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और उसके बाद
3: जी
4: भी जब वो हायर एजुकेशन में गई, उसने बेटी ने मेरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ का कोर्स किया हुआ है कलकत्ता से।

0: अच्छा जी,
1: यस।
0: तो अभी कहाँ है?
1: अभी वो मुंबई में शारदा नमस्चंद मंगलदास, एक वर्ल्ड वाइड लॉ फर्म है, उसमें
0: जी,
1: काम कर रही है
0: वाह वाह वाह,
1: एज ए सीनियर एसोसिएट के लिए।
0: जी। अच्छा अब सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपकी बच्ची सफल होकर पहुंच गई, आपको कितना लगता है कि उनके इस सफलता में कितना योगदान रहा हमारे वात्सल्य का?
1: इसमें वात्सल्य का बहुत अधिक योगदान रहा है। वात्सल्य में मेरी बच्ची का पूरा जो कहना चाहिए सर्वांगीण विकास हुआ है।
0: जी
1: स्कूल में जो जिस तरह से उसको किसी चीज के लिए बोलने के लिए, खेलने के लिए, जो भी उसको टारगेट दिया जाता था समय पर पूरा करके, और जो उसने यहाँ सीखा है वो मेरे को उसने खुद अनुभव करके बताया। जब वो NLU कलकत्ता गई तो वहां के बच्चों के साथ जब कंपटीशन हुआ
0: हाँ जी
1: तो उस समय उसने बताया कि मुझे जो स्कूल में मेरे को प्रोत्साहित किया जाता था और जैसा वो किया जाता था,
0: एनकरेज
1: किया जाता था, और उससे
0: तो
1: मुझे बहुत
0: लाभ दिया,
1: लाभ मिला। क्योंकि
0: बहुत
1: वहां पर भी जो कंपटीशन है,
0: हाँ जी
1: बहुत सारे बच्चे जो आते हैं टॉपर्स आते हैं पूरे ऑल इंडिया के,
0: जी,
1: तो उनके बीच में मुझे स्टैंड होने में
0: बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। अच्छा जैसे बीच में आपने अभी बात कही कि जो खेल कूद का मुझे टास्क दिया जाता था या पढ़ाई का टास्क दिया जाता था, तो आप यहाँ की खेल व्यवस्थाएं जो है, सुविधाएं जो है, उनसे कहाँ तक आप रहे संतुष्ट?
1: हम हमेशा संतुष्ट रहे हैं।
0: कुछ खेलती रही आपकी बच्ची?
1: नॉर्मल जो स्कूल में होते थे
0: सारे गेम्स
1: में
0: गोइंग टू। अच्छा इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर कभी वाद विवाद प्रतियोगिता या
1: उसमें हमेशा रहती थी? मैंने पहली बार जब वो मेरी बच्ची भोपाल में सक्सेस अहित करके एक उसने वो किया था, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी, मैंने पहली बार जब उसको देखा स्टेज पे बोलते हुए उनका प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी इतना अच्छे से बोल सकती है, वो करती है बिना किसी टारगेट के। उसको पहले बोला गया था, वो जाके सीधा स्टेज पे बोलने लगी थी।
0: क्या
1: उसको बुला के स्टेज पे,
0: तो आप अपनी
1: तो
0: बच्ची,
1: ये सब
0: जी,
1: चीजें बहुत अच्छी होती है स्कूल को, स्कूल में जो सिखाई जाती है बच्चों के लिए,
0: बिल्कुल जो स्कूल से जो उसको नींव मिलती है
1: वो बहुत अच्छी रहती है,
0: बहुत अच्छी है। तो आप वात्सल्य से पूरी तरह संतुष्ट रहे?
1: बहुत अधिक संतुष्ट है हम लोग।
0: थैंक यू सो मच।
2: वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल सागर।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वात्सल्य बच्चों का सुनहरा भविष्य। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा।

बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं, खासकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा जय हिंद। बाल सभा की शुरुआत बच्चों आज इन पंक्तियों के साथ कर लेते हैं। जिन हाथों ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, जिनकी सीख ने हर मुश्किल को हौसला दिया, वो है हमारे माता पिता। हाँ बच्चों, अपने माता पिता और घर के सभी बड़ों का सम्मान करते हुए हम एक बार फिर आ गए हैं आप ही की तरह चहकती फुदकती उछलती गूंजती, बड़ों का आशीर्वाद लेकर हौसले के साथ आगे बढ़ती बच्चों की सभा बाल सभा लेकर। आज आप साथ हैं अपनी रानी दीदी के, स्वीकारें दीदी का ढेर सारा प्यार और सुप्रभात। ढेर सारे उत्साह के साथ सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के बाल सभा कार्यक्रम में। बाल धमाल में आज बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। प्यारी इसलिए क्योंकि ये आपसे ही जुड़ी हुई है और आप सब बच्चे तो प्यारे होते ही हैं। तो चलिए बच्चों, बात है गर्मियों की। गर्मियों में जब हम अपने परिवार के साथ बच्चों घूमने जा रहे थे तो हम सभी ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसी ट्रेन में एक बहुत ही प्यारा और होशियार

बच्चा अपने माँ पापा के साथ अपने नाना नानी के यहाँ जा रहा था। क्योंकि वो छोटा सा मासूम सा बच्चा बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा था। जैसे कहीं ट्रेन रुक गई तो वो बोला कि ट्रेन को शायद सिग्नल नहीं मिला होगा इसलिए रुक गई। ऐसे ही उसने हमें बताया कि सफर ट्रेन से हो या बस से हो, पर खिड़की के बाहर अपना सिर या हाथ नहीं निकालना चाहिए। और जानते हो बच्चों, और भी कई समझदारी वाली बातें वो किए जा रहा था। तो हमने उससे पूछ ही लिया कि अरे आप तो बहुत छोटे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं, और कहाँ से आपने ये बातें सीखी हैं? तब उस छोटे से प्यारे से बच्चे ने बोला कि आंटी जी, ये सारी बातें हमारे दादा दादी ने हमें सिखाई हैं, और हमारे माँ पापा ने सिखाया है कि हमें अपने घर में अपने साथ रह रहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का और उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका खूब खूब सम्मान करना चाहिए। तो वाह बच्चों, उस बच्चे की बात सुनकर तो दीदी का मन बहुत ही खुशी से भर गया। और बस तभी से हमने सोच लिया कि अब की बार जब भी आप लोगों के लिए बाल सभा लेकर आऊंगी तो ये बातें जरूर बताऊंगी। है ना अच्छी बात बच्चों? आपको ये बात समझनी होगी बच्चों कि हर पीढ़ी की अपनी विशेषताएं होती हैं। हाँ, ये अच्छी बात सुन के बच्चों अब हम अपनी बातें कर लेते हैं, है ना। और हर पीढ़ी की अपनी विशेषताएं होती हैं बच्चों, और वो कैसे होती हैं? वो ऐसे होती हैं बच्चों कि आज जैसे हम तकनीकी समय में रह रहे हैं, हमारे पास कई साधन हैं ऐसे हैं जो हमारे कामों को सरल बनाते हैं, ये तो अच्छी बात हुई। पर ऐसा सोचना कि हमारे दादा दादी हैं ये सब साधन उनसे चलाते ही नहीं बनते, तो कभी कभी हम उन्हें कम समझने लगते हैं कि अरे आपको तो ये मोबाइल चलाते ही नहीं आता, आपको तो टीवी ऑन करते ही नहीं आता, आपको तो ऐसा करते नहीं आता, है ना। हम ऐसा बोल देते हैं ना कभी कभी अपने दादा दादी से। तो ये बात तो अच्छी नहीं है बच्चों। उनके समय में भी कई कई अच्छी बातें होती थी जो आज भी हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन आजकल कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं घरों में जो जनरेशन गैप देखने को मिलता है ना, जो पीढ़ियों का अंतर होता है ना बच्चों, कि जहां हमारे बुजुर्ग हमारे साथ रहना चाहते हैं और हम अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि कुछ पल उनके पास बैठते ही नहीं, है ना। ऐसी स्थिति बनती है और हमारे विचारों में भी अंतर आ जाता है। लेकिन इस बात को समझकर सामंजस्य से चलने की जरूरत होती है बच्चों। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं होती है तो मन तो दुखता है ना, और ये गलत बात भी होती है। आज के बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अनुभवों को जानकर आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि उनसे प्रतिस्पर्धा की जाए। माना आप कंप्यूटर में मास्टर हैं, मोबाइल चलाना जानते हैं, किसी भी सवाल का जवाब पल भर में ढूंढ लेते हैं, लेकिन यदि काम एक दूसरे के सहयोग के साथ किए जाएं तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाती है बच्चों। जानते हो, जीवन में सारी बातें स्कूली किताबों से ही नहीं सीखी जा सकती। आज जिन घरों में बुजुर्ग रह रहे हैं, जिन घरों में दो तीन पीढ़ियां साथ रह रही हैं, तो वहां विचारों में असमानता के साथ नहीं बल्कि सहयोग की भावना और सम्मान के विचारों के साथ रहने की आवश्यकता है। और इसी बात की जानकारी के लिए ही हर साल 1 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों कि आज हमारे दादा दादी या हमारे घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रह रहे हैं, तो हमें ये संकल्प लेना है, ये बात मान के चलना है कि उनके लिए दिन में कुछ पल हमें उनके साथ बिताना है और उनके साथ सम्मान के भाव रखना है, उनसे ढेर सारी बातें करनी है और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें सीखनी है और उनके अनुभव को सीखकर गर्व के साथ आगे बढ़ना है। तो ये तो हो गया आज बाल सभा में बाल धमाल। और चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: और बच्चों इस प्यारे से गीत के बाद अब मिलते हैं आपके अपने साथी से नन्हे मेहमान के अंतर्गत।
1: ये कर आए बच्चों का शो।
2: बाय मंच।
3: बाल साथियों, हमारे स्टूडियो में एक नन्हे मेहमान आप सभी से मुलाकात करने के लिए आ चुके हैं और आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका परिचय जानते हैं। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम अथर्व मालविया है।
3: अथर्व, अथर्व आपके नाम का मतलब क्या है?
2: मेरा नाम का मतलब श्री गणेश है।
3: अच्छा, आप ये बताइए अथर्व जी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
3: तो आपको किन किन विषयों में इंटरेस्ट है, कह सकते हैं रुचि है?
2: मुझे योगा करने में, ड्राइंग, पेंटिंग, बास्केटबॉल खेलने में मजा आता है।
3: अच्छा, तो फिर आपने बताया कि आपको योग में भी रुचि है, तो योग के बारे में कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताइए।
2: मेरा ये मानना है कि योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, योगा से फोकस बढ़ता है और कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। ये हमारी पढ़ाई के लिए अच्छा होता है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है।
3: हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। और जब हमारा एकाग्र चित्ता या कॉन्सेंट्रेशन जो आपने बोला ये अच्छा होता है तो हमें बहुत ध्यान लगता है पढ़ाई में, है ना? हाँ। और बहुत जल्दी चीजें याद भी होती हैं। अथर्व बेटा, आप तो बहुत अच्छी बातें आज बता रहे हैं हमारे स्टूडियो में। अच्छा ये बताइए कि आपको कौन कौन से आसन आते हैं?
2: मुझे सूर्य नमस्कार आता है, हलासन आता है, सिरासन आता है।
3: ये तो बहुत अच्छे अच्छे आसन हैं और आपको अभी इतनी छोटी सी उम्र में सारे आसन आते हैं। और जैसे आपने योग को अपनी रुचि का विषय बनाया है, इसको आगे भी निरंतर जारी रखिएगा, है ना? पढ़ाई के साथ साथ योग को भी समय दीजिए ताकि आप इसमें और अच्छे से महा

0: महारत हासिल कर पाए।
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: और मुझे एक चीज और बतानी है कि मेरी एक छोटी सी बहन है 2 साल की और उसका नाम अविशा है, वो भी हमारे साथ योगा करती है।
0: अरे वाह क्या बात है, 2 साल की बच्ची भी आपके साथ योगा करती है, आपने छोटे से ही इस गुण को विकसित किया है। तो अच्छा ये बताइए कि आपको योग करने की जो एक कह सकते हैं कि मार्गदर्शन है वो किससे मिला, कौन योग करता था आपके घर में, मम्मा या पापा?
1: मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर आया था और मैंने देखा कि मेरे परिवार के सारे सदस्य योगा कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: तो मैंने उनको देखा और सीखा। जब मैंने योगा किया मेरा दिमाग बिल्कुल शांत, कंसंट्रेशन बढ़ा, चीजों में फोकस करने में आसानी हुई और मुझे बहुत हल्का भी लगता था।
0: अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। लोग कहते हैं कि जब नानी के यहाँ जाते हैं तो छुट्टियों में बड़ी मस्ती करने जाते हैं, घूमने फिरने खाने, आपने तो इतने अच्छे विषय को चुना और अपनी उसमें इंटरेस्ट को डेवलप किया। अच्छा अथर्व जी ये बताइए कि आपको योग के अलावा और क्या अच्छा लगता है करना, घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, क्या पसंद है?
1: मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है।
0: पेंटिंग करना पसंद है, अच्छा। खाने में क्या पसंद है आपको?
1: मुझे छोले भटूरे पसंद है।
0: अच्छा गीत संगीत का शौक है कि नहीं?
1: हाँ जरूर है।
0: अच्छा अथर्व जी जैसे कि आपने बताया कि आप नानी के यहाँ आते हैं छुट्टियों में तो अभी देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, तो कुछ गर्मी के बारे में कहना चाहेंगे हमारे जो नन्हे मुन्ने श्रोता हैं उनसे कुछ सलाह देना चाहेंगे?
1: गर्मी में हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए और फल भी खाने चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, आम है, खरबूज, तरबूज, है ना, तो जितने अच्छे पानी वाले फल हैं इनको खाएं। और सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे धूप में बाहर मत खेलें, है ना, बच्चे जो होते हैं कि घर पे नहीं रहना है बाहर खेलना है ये नहीं करना है।
1: हाँ
0: शाम को खेलना है और सुबह जल्दी उठ के खेलें। और आप तो योग करते हैं?
1: हाँ
0: है ना, किस वक्त करते हैं आप योग?
1: मैं सुबह 5 बजे उठ के करता हूँ योग।
0: अरे वाह चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है अथर्व जी, और आज आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं ने आपको सुना है उनको भी बहुत पसंद आया होगा। आप ये बताइए आपको कैसा लगा आज हमारे स्टूडियो में आके?
1: मुझे स्टूडियो में आके बहुत खुशी हुई।
0: खुशी हुई, चलिए हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो बच्चों अथर्व मालवीय से बातचीत कर रही थी सुब्रता यादव दीदी, और सभी बच्चों को अच्छा लगता है यहाँ आके दीदी से बात करना, स्टूडियो में बैठ के अपनी बातें बताना, स्टूडियो घूमना बहुत अच्छा लगता है। यदि आप भी अपने कुछ बातें करना चाहते हैं, बातें बताना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं सागर आकाशवाणी के स्टूडियो में बुधवार शाम 4 बजे से। कार्यक्रम बाल सभा के लिए बच्चों की रिकॉर्डिंग होती है। और चलिए बच्चों कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं।
3: आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं
4: हिंदुस्तान की।
2: बच्चों आज झांकी हिंदुस्तान की के अंतर्गत हम जानेंगे ड्रोन के बारे में। बच्चों ड्रोन एक स्वचलित विमान होता है जिसे बिना किसी पायलट के दूर से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है या बनाया गया है। ड्रोन एक मानव रहित छोटा विमान या जहाज के समान होता है जो मानव नियंत्रण के बिना कहीं दूर बैठे हुए भी इसे चला सकते हैं, और वजन कम रहे इसके लिए अलग अलग हल्के मिश्रित पदार्थों से ये ड्रोन बनाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त उपकरणों से लैस होते हैं, जैसे इसमें कैमरे लगे होते हैं, जीपीएस सिस्टम होता है, गाइडेड मिसाइल होती है, नेविगेशन सिस्टम और सेंसर, इसमें ये सारी चीजें शामिल होती हैं। और ये ड्रोन की उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अपनी उन्नत तकनीक के कारण ये आज हमारे रोजमर्रा के कामों में भी बहुत इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इस तरह ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां इनकी उपयोगिता बढ़ गई है, जैसे सैन्य अभियान है, वन्य जीव निगरानी है, उड़ने वाली मशीनें हैं जो कृषि निगरानी करती हैं, डिलीवरी सेवाओं में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी ये इनकी उपयोगिता बढ़ गई है, और दिनों दिन तकनीकी रूप से ये बहुत मजबूत और उन्नत होते जा रहे हैं, इसलिए इनका उपयोग अच्छा खासा बढ़ गया है आजकल के समय में। ड्रोन की उन्नत तकनीक के कारण आज ये अधिक स्मार्ट भी हो गए हैं, सुरक्षित भी हैं और अधिक सुलभ होते जा रहे हैं। तो आज बच्चों हमने झांकी हिंदुस्तान की के अंतर्गत ड्रोन के बारे में बहुत ही अच्छी सी जानकारी हासिल की, और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं बाबा जी के पिठारे के साथ। बाबा जी आ गए हैं और पिटारा खुल रहा है, आइए सुनते हैं कि आज बाबा जी के पिटारे से कौन सी जगमगाती कहानी, शिक्षाप्रद कहानी निकलने वाली है।

बच्चों, बाबा फिर आ गए लेकर हितोपदेश की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। बच्चों, इस कहानी के पहले हम आपको बताएं, कभी भी किसी से बात करने के पहले हमें उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, बोलने के पहले तोल लेना चाहिए कि हम कैसी बात और किनसे करने जा रहे हैं। तभी बच्चों, कहा जाता है ज्यादा बोलने से अच्छा है कि आप मौन रहें। ऐसी ही एक कहानी है, पक्षी और बंदरों की कहानी, जो हमने ली है हितोपदेश से। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है, आसमान में काले काले बादल छाए थे, गड़गड़ गड़गड़ और झमझम झमझम बारिश हो रही थी और बिजली तड़क रही थी, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। बच्चों, ऐसे में एक पेड़ के नीचे आकर बहुत सारे बंदर पानी में ठिठुरते हुए बैठ गए। ठंडी, ठंडी ठंडी ठंडी, ऐसे करते हुए कांप रहे थे। अब क्या होता है बच्चों कि उन्होंने जैसे ही सिर के ऊपर देखा कि पानी तो आता जा रहा है, लेकिन कुछ पक्षी नर्मदा के किनारे पर स्थित सेमर के पेड़ में घोंसले बनाकर बड़े आराम से उसके भीतर सुख से रह रहे थे। जब बंदरों ने उनको देखा कि पक्षी तो बड़े सूखे गरम गरम खाना भी खा रहे हैं और हम लोग बंदर बारिश में भीग रहे हैं, तो बंदरों ने ऊपर पक्षियों को देखा, पक्षियों को भी बंदर पर दया आई। लेकिन बच्चों, बोलने का तरीका, कब किससे क्या बोला जा रहा है, इस बात पर गौर करो। पक्षियों ने बंदरों से कहा, हमने केवल अपनी चोंचों की मदद से इकट्ठा किए हुए तिनकों से घोंसले बनाए हैं और तुम तो इतने हट्टे कट्टे मजबूत पहलवान हो और फिर भी बारिश में भीग रहे हो, घर क्यों नहीं बनाते अपना। और बच्चों, कुछ पक्षी बच्चों ने हंस दिया, बंदर भीग रहे। बच्चों, बंदरों को अब उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ये सुनकर बंदर झुंझला गए। उन्होंने आपस में विचार किया कि घोंसलों में आराम से रहकर ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें सबक सिखाया जाए। बंदरों ने पक्षियों के घोंसलों पर हमला कर दिया। पक्षी किसी तरह जान बचाकर उड़ गए। बंदरों ने सारे घोंसलों को तहस नहस कर दिया। पक्षियों के अंडे फूट गए। अब बारिश भी बंद हो गई थी। बंदरों का समूह अपनी दुष्टता पर खुश होकर चला गया। पक्षी आज बिना घोंसलों के थे, फिर से तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाने की तैयारी में पक्षी का परिवार निकल गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? सबक यही मिलता है कि हमें बोलने से पहले बहुत बहुत सोचना चाहिए, कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मजाक उड़ाना बुरी बात है। और बच्चों,

0: ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि जो भी चीज या सीख या शिक्षा होती है, यदि हम उसे किसी उदाहरण से या कहानी से सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ये हमेशा हमें याद रहती है। इसलिए तो बाबा आते हैं, अच्छी सी कहानी भी सुना जाते हैं और बढ़िया सी सीख भी दे जाते हैं। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं रेडियो की पाठशाला के साथ।
1: तो बच्चों ये है
2: रेडियो की पाठशाला।
0: जानते हो बच्चों, अभी कुछ दिन पहले हम ऐसे ही शाम को कहीं घूमने जा रहे थे, तो हम तो आराम से चले जा रहे थे, लेकिन क्या देखते हैं कि कुछ मतलब कुछ थोड़े से बड़े बच्चे थे, जोर से गाड़ी बाजू से जुई करके निकल गए, बहुत तेज से आवाज करके और पटाख से आगे चले गए। तब हमारे मन में ख्याल आया कि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारे ऐसे नियम पढ़े थे, पढ़ाए जाते थे हमारे स्कूल में, हमारे माता पिता भी बताते थे कि यातायात के कौन से नियम होते हैं, सड़क पर चलने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या इन बच्चों को ये बातें समझ नहीं आई है? क्या इन्होंने ये नियम नहीं जाने हैं, समझे हैं? बिल्कुल बच्चों, हमारी किताबों में और हमारे माता पिता हमें हमेशा ये बातें समझाते रहते हैं और हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि वो बातें मानते ही नहीं है। लेकिन इन बातों को मानना बहुत जरूरी होता है, तो हमने सोचा कि चलिए आज हम अपने कार्यक्रम में बातों में आपके लिए ये सारी बातें बता देते हैं कि सड़क पर चलने के क्या नियम होते हैं, यातायात के क्या नियम होते हैं, आपसे ये बातें कर लेते हैं। बच्चों, चाहे पैदल यात्री हो या वाहन चालक, सड़क संबंधी नियमों का पालन सभी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि अचानक या आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। ऐसे में जरूरी है कि हम ना सिर्फ रोड सुरक्षा के नियम के बारे में जानें, बल्कि इनका पालन भी करें। रोड सुरक्षा के नियम जानने से पहले आइए जान लेते हैं बच्चों कि इनका पालन ना करने वालों के बारे में जो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जो आंकड़े आप जानेंगे वो हैरान कर देते हैं बच्चों। जैसे भारत में हर साल लगभग 1,20,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और करीब 12,70,000 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर छह मिनट में किसी की जान सड़क दुर्घटना में चली जाती है, और यह आंकड़े भी उन दुर्घटनाओं के हैं जिनके बारे में रिकॉर्ड या जानकारी होती है बच्चों। जबकि कई इलाकों में ऐसी कितनी ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाती, यानी कि सही आंकड़े इससे कहीं अधिक गंभीर होते हैं। अब बात आती है कि ऐसी दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि सड़क से संबंधित मूल नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाए, चाहे वो सड़क पर चलने वाले लोग हों या वाहन चालक हों। सुरक्षा नियमों का पालन आप बच्चों को भी सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब सड़क सुरक्षा नियम भी जान लेते हैं बच्चों। जैसे चलते समय हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें, जहां फुटपाथ ना हो वहां सड़क के एकदम बाईं तरफ चलना होगा। सड़क क्रॉस या सड़क पार करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल, सबवे, फुटओवर ब्रिज का उपयोग करें। जिन जगहों पर ये सुविधाएं ना हो बच्चों, वहां सुरक्षित जगह देखकर सड़क क्रॉस करें, और जब भी सड़क क्रॉस करें दोनों तरफ देखकर ही आप क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बच्चों की, दौड़कर सड़क क्रॉस ना करें। और कभी कभी आप अपने माता पिता के साथ चलते हैं तो ध्यान रखें कि आप हमेशा किनारे की तरफ या बाईं तरफ ही चलें। बाईं तरफ आप और बाहर की तरफ है जो रोड की तरफ है, वहां माता पिता को चलने दें। और ऐसे समय भी ध्यान रखना है कि खेलते हुए सड़क पर नहीं चलना है। आपकी उम्र अभी कम है, इसलिए वाहन चलाने की जिद बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, यदि आप साइकिल चला रहे हैं तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है कि हेलमेट पहनकर साइकिल चलाएं और बीच रोड पर साइकिल ना चलाएं, हमेशा किनारे पर सुरक्षित रहकर ही साइकिल चलाएं। और ऐसे समय मोबाइल

फोन ईयरप्लग के इस्तेमाल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि बात करनी है तो रुककर और सुरक्षित जगह रुककर ही बात करें। तो बच्चों, ये कुछ बातें हमने जान ली कि सड़क के पर चलने के क्या नियम होते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना है। और देखिए, पालन आप कीजिएगा, लेकिन हम भी अपने नियम का पालन करते हैं। समय हो गया है बाल सभा से अनुमति लेने का। तो इन्हीं बातों के साथ के अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे और खूब अच्छे से खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे। दीदी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम बाल सभा से। जय हिंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: बातें जंगल से।
1: कार्यक्रम के इस एपिसोड में आज हमारे बीच है पेंगोलिन। नमस्कार पेंगोलिन, आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं आपके बारे में कुछ।
3: नमस्कार साथियों, मैं पेंगोलिन हूँ, मुझे चीटी खोर भी कहा जाता है। मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तनधारी हूँ जिसका पूरा शरीर कठोर सल्कों से ढका होता है। ये सर केराटिन से बने होते हैं, यही पदार्थ आपके नाखूनों और बालों में भी पाया जाता है। इसलिए मेरे सल्क किसी हड्डी या धातु के नहीं होते, मेरे दांत नहीं होते हैं, लेकिन मेरी जीभ बहुत लंबी पतली और चिपचिपी होती है। इसी की मदद से मैं चींटियों और दीमक को खाता हूँ। मैं दिन में कम और रात में अधिक सक्रिय रहता हूँ। मुझे शांत वातावरण पसंद है और मैं जंगलों, घास के मैदानों तथा झाड़ीदार क्षेत्रों में छोटे बिल बनाकर रहता हूँ। जब मुझे खतरा महसूस होता है तो मैं अपने शरीर को पूरी तरह से गोल गेंद की तरह मोड़ लेता हूँ। इससे मेरे कठोर सर्क बाहर की ओर आ जाते हैं और कई शिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते।

0: अरे वाह, अब ये और बता दीजिए कि प्रकृति में आपकी भूमिका क्या है।
1: मैं प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक कीट नियंत्रक हूँ। मेरा मुख्य भोजन चींटियाँ और दीमक है। एक वयस्क पेंगुलिन एक वर्ष में लाखों चींटियाँ और दीमक खा सकता है, इससे उनकी संख्या नियंत्रित रहती है। यदि दीमकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो वे जंगलों के पेड़ों, लकड़ी, खेतों और कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब मैं अपने मजबूत पंजों से जमीन खोदकर भोजन घोसता हूं तो मिट्टी ढीली हो जाती है। इससे मिट्टी में हवा और पानी आसानी से पहुंचते हैं तथा नए पौधों की जड़ें अच्छी तरह बढ़ पाती हैं। इसलिए मुझे प्रकृति का छोटा माली भी कहा जा सकता है।

0: जी हाँ पेंगोलिन जी, हमें पता है कि आपकी जीभ बहुत लंबी होती है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं?
1: साथियों, मेरी जीभ मेरे शरीर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है। जब मैं दीमक का टीला या चींटियों का बिल ढूंढता हूँ तो

पहले अपने मजबूत पंजों से थोड़ा सा खोलता हूँ, फिर अपनी बहुत लंबी और चिपचिपी जीभ अंदर डालता हूँ। हजारों चींटियां और दीमक मेरी जीभ से चिपक जाती हैं और मैं उन्हें आसानी से निगल लेता हूँ। क्योंकि मेरे दांत नहीं होते हैं, इसलिए मेरा मजबूत पेट और उसमें मौजूद छोटे छोटे कंकड़ भोजन को पीसने में मदद करते हैं।

0: जी, क्या प्रकृति में आपके लिए भी कुछ खतरे हैं?
1: साथियों, मुझे यह बताते हुए दुख होता है कि मैं दुनिया में सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी हूँ। कुछ लोग अंधविश्वास और लालच के कारण मेरे सलकों और मांस का अवैध व्यापार करते हैं, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि मेरे सलकों में कोई औषधि या जादुई गुण नहीं होते हैं। वे केवल कैरोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल इंसानों के नाखूनों की तरह। दूसरी बड़ी समस्या है जंगलों का कटना और प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जब जंगल खेती, सड़क खनन या निर्माण कार्यों के लिए काटे जाते हैं तो मेरे रहने के बिल नष्ट हो जाते हैं और भोजन भी कम हो जाता है। मैं बहुत धीरे धीरे प्रजनन करता हूँ। अधिकांश मादाएं एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए यदि हमारी संख्या कम हो जाए तो उसे दोबारा बढ़ने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके अलावा आवारा कुत्तों के हमले और सड़क दुर्घटनाएं, जंगल की आग भी कई क्षेत्रों में हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं।

0: अब हम जानना ये चाहते हैं कि यदि पेंगुलिन प्रकृति से समाप्त हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा।
1: यदि पेंगुलिन धरती से लुप्त हो जाएं तो चींटियों और दीमकों की संख्या कई स्थानों पर बहुत बढ़ सकती है। इससे जंगलों के पेड़, लकड़ी, खेतों की फसलें और कई इमारतें अधिक नुकसान झेल सकती हैं। मिट्टी की प्राकृतिक खुदाई कम हो जाएगी, जिससे मिट्टी में हवा और पानी का प्रवाह भी प्रभावित होगा। धीरे धीरे पूरे जंगल के पारिस्थितिक तंत्र पर असर दिखाई देने लगेगा। पेंगुलिन भले ही छोटा और शांत जीव है, लेकिन प्रकृति के संतुलन में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। किसी भी प्रजाति का समाप्त होना जैव विविधता के लिए एक बड़ी क्षति है।

0: अब आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: साथियों, मेरा संदेश यह है कि अंधविश्वासों पर कभी विश्वास ना करें। किसी भी जानवर की सींग, सल्क, हड्डी, शरीर के किसी भी भाग में कोई चमत्कारी दवा नहीं होती। यदि कहीं वन्य जीवों के अवैध शिकार या तस्करी की जानकारी मिले तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें। जंगलों की रक्षा करें, क्योंकि जंगल ही हमारा घर है। बिना आवश्यकता जंगलों को नष्ट ना करें और वन्य जीवों का सम्मान करें। साथियों, आप प्रकृति के सच्चे मित्र बन सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को पेंगुलिन के बारे में सही जानकारी दें। जितने अधिक लोग सच्चाई जानेंगे उतने ही कम लोग अंधविश्वास का शिकार होंगे और हमारी रक्षा कर पाएंगे। याद रखिए, मैं ना किसी को नुकसान पहुंचाता हूं, ना किसी का भोजन छीनता हूं। मैं चुपचाप जंगल में रहकर प्रकृति की सेवा करता हूं। यदि आप मुझे बचाएंगे तो आप जंगलों और जैव विविधता की भी रक्षा करेंगे।

0: आज पेंगोलिन की भूमिका में हमारे साथ रहे,
1: मेरा नाम अर्पित सोनी है, मैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से हूँ।
0: और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
2: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना आपने सुना, जिसे गाया चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर ने, गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना इतनी सी खुशी गाना फिल्म बर्फी का गाना है, आवाश्या घोषाल और निखिल पाल के, गीतकार सदानंद किरकिरे, संगीत प्रीतम का। समय हो चला

अभी आपने सुना 5 घंटे में 5 करोड़ फिल्म का गाना, गायक लेनॉर्ड विक्टर और सुजैन, गीतकार प्रवीण दबास। दोस्तों आज बता दें कि आज विश्व मंदिर दिवस है, वर्ल्ड डीफ डे। हर वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है इन लोगों के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों और समाज में समान भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सुनने में कठिनाई किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा या क्षमता को कम नहीं करती और उनको तकनीकी सुविधाएं और सांकेतिक भाषा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसी के साथ ही आज विश्व नदी दिवस भी है, तो नदी की स्वच्छता और उसके संरक्षण के लिए हम सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। नदियां बहती रहेंगी तो तभी जीवन की धारा भी निरंतर बहती रहेगी। हम सब मिलकर अपनी नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का मिलकर प्रयास करें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और पलक मुछाल ने, और बोल लिखे इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है मिथुन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी न कोई संदेश
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
3: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है विचार है जीवन के अनुभव हैं वो है जाने माने कहानीकार उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा
4: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को उसका पहल में वो लेख छपा था कहानी की काया और फिल्म की छाया उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया इस बात को रेखांकित किया
3: आज के मेहमान 20 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है आप सभी को मेरा नमस्कार

0: हाथी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? कृष्णदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

अपने चाहने वालों का भरपूर प्यार पाया पार्श्व गायक महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर ने अपने गीतों के जरिए जो जगह बनाई है वो उनका सुरीला करिश्मा ही कहा जाएगा।

9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर ने लगभग 50 साल तक हिंदी सिने संगीत आकाश पर राज किया और आज जबकि वो हमारे बीच नहीं हैं, तब भी उनके गीत उनके हर चाहने वाले के दिल की वादियों में गूंज रहे।

मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र कपूर ने तय कर लिया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है और इसीलिए वो अमृतसर से मुंबई आ गए। यहां उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में पूरी योग्यता हासिल करने के लिए अलग अलग गुणीजनों से इसकी शिक्षा प्राप्त की, जैसे पंडित हुसनलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा। और इसी का नतीजा था कि महेंद्र कपूर ने अपनी एक अलग सिंगिंग स्टाइल बना ली। बस फिर क्या था, महेंद्र कपूर की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस साल के मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जीत

0: चलाचल।
1: महेंद्र कपूर ने जो सिंगिंग कंपटीशन जीता उसे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने भी सुना था, जो कि उस समय अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म नवरंग के निर्माण की योजना बना रहे थे। वी शांताराम को महेंद्र कपूर की आवाज में एक अलग खनक, एक अलग सी मिठास और एक अलग सा सुरीलापन सुनाई दिया और उन्होंने अपने संगीतकार सी रामचंद्र से बात की। उन्होंने भी महेंद्र कपूर को सुना, तब दोनों ने निर्णय लिया कि महेंद्र कपूर होंगे फिल्म नवरंग के पार्श्व गायक।

नवरंग फिल्म भी हिट हुई और इसका संगीत भी। उसके बाद महेंद्र कपूर को बी आर चोपड़ा की फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म थी धूल का फूल। आहा।

बीआर चोपड़ा की फिल्मों का दर्शकों को हमेशा इंतजार रहता था। उनकी फिल्मों का विषय भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता था और संगीत भी लोकप्रिय होता था। महेंद्र कपूर की एंट्री बीआर कैंप में होने के बाद उनकी वहां जगह हमेशा के लिए तय हो गई, पक्की हो गई। फिर तो उन्होंने बीआर बैनर की सभी फिल्मों में गीत गाए और सभी हिट भी रहे। गुमराह,

महेंद्र कपूर को उपकार के गीत मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में गुमराह का गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, 1968 में हमराज का गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, इसके लिए महेंद्र कपूर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। गायक महेंद्र कपूर ने अपना पूरा जीवन सिने संगीत को समर्पित किया और अपने चाहने वालों के दिलों में वो जगह बना ली जो तब तक बनी रहेगी जब तक संगीत की दुनिया में स्वर लहरियां गूंजती रहेंगी।

0: ये था पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती थी।
1: उजाली उनकी यादों की। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों आगर मालवा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 से अधिक लाभार्थी बहनों के खातों में सितंबर माह की 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से किया। इस अवसर पर डॉक्टर यादव ने जिले में 2,54,00,000 रुपए की लागत के 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और 2,25,00,000 रुपए की लागत के 33 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जिले का चहुंमुखी विकास हो रहा है। यहां पर 4,000 करोड़ की लागत से आलू आधारित उद्योगों की स्थापना हो रही है। वहीं पर 300 से अधिक अन्य उद्योग भी लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत बीते दिनों एक दिवसीय प्रवास पर आगरमालवा पहुंचे। उन्होंने अपने प्रवास के दौरान नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ माँ बगलामुखी के दर्शन किए। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री एवं आगरमालवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने बीते दिनों सर्किट हाउस पर सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा की। इस मौके पर कलेक्टर शेर सिंह मीणा और जिला पंचायत सीईओ ने प्रभारी मंत्री को शिविरों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा स्थित मोती सागर तालाब के कमलकुंडी पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। इसके साथ ही पूरे जिले में लगभग 3,62,500 से अधिक दीयों की रोशनी की गई। नमो सेवा अभियान के तहत आगरमालवा जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा द्वारा आगरमालवा जिला अस्पताल के लिए नई हेमोडायलिसिस मशीन, मय आरओ प्लांट एवं 3 KV ऑनलाइन UPS करीब 10,00,000 रुपए की राशि सांसद निधि से स्वीकृत की गई है। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित आगरमालवा जिले की चयनित ग्राम पंचायतों शिवगढ़, महुड़िया, भीमाखेड़ी, निपनिया, हनुमान, गैलाना, खनोटा, देहरी, गुर्जर, करकड़िया, अमरकोट पंचायतों के 19 ग्रामों में प्रत्येक सप्ताह 3 दिवसीय शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किए गए। वहीं आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होगा। 29 सितंबर को मतदान में 15 वार्ड के 13,843 मतदाता कुल 17 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के तहत आगरमालवा जिले में आमजनों की 81% शिकायतों का निराकरण करते हुए जिला शिकायत निराकरण में ए ग्रेड हासिल किया है। वहीं युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा में बीते दिनों आयोजित हुए रोजगार मेले में 83 शिक्षित बेरोजगारों का प्रारंभिक चयन किया गया। वहीं स्वरोजगार के तहत 86 हितग्राहियों को 52,00,000 रुपए के स्वीकृति पत्र एवं ऋण वितरित किए गए। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए 45 आवेदकों का पंजीयन भी किया गया। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या को कम करने के उद्देश्य से आगरमालवा पुलिस द्वारा बीते दिनों मिशन जीवन रक्षक अभियान की शुरुआत के मौके पर पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने नागरिकों से संवाद करते हुए CPR गोल्डन आवर तथा राहवीर योजना के संबंध में जानकारी दी। वहीं डॉक्टरों और उनकी टीम ने लोगों को प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। आपदा मित्र योजना के तहत आगरमालवा जिले में नामांकित 125 आपदा मित्रों को पिछले दिनों दिए गए 7 दिवसीय प्रशिक्षण में समस्त प्रकार की आपदाओं, दुर्घटना से बचाव एवं तकनीकी विषय पर SDERF तथा होमगार्ड के जवानों द्वारा समझाया गया। आगरमालवा जिले के वृंदावन ग्राम तनोडिया में बीते दिनों आयोजित किए गए पशु चिकित्सा शिविर में 238 पशुओं का उपचार कर निःशुल्क औषधि वितरण किया गया। वहीं नस्ल सुधार के लिए 4 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। इस मौके पर योजना के तहत चयनित पशुपालकों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। आगरमालवा जिले में सोयाबीन की फसल को रोग और कीट से बचाने की सलाह देने के लिए कृषि विभाग के अमले द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामों में किसानों के खेतों में जाकर फसल निरीक्षण कर रोगों के प्रारंभिक लक्षण दिखते ही तत्काल नियंत्रण करने के लिए दवाइयों के छिड़काव के साथ अन्य उपाय अपनाने की सलाह दी गई। हाल ही में आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ माँ बगलामुखी मंदिर के बाहर पुलिया से तेज बारिश में एक चार पहिया वाहन के बह जाने से कार में सवार ओडिशा निवासी 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद मंदिर प्रबंध समिति ने निर्णय लेते हुए रात 8 बजे के बाद किसी भी प्रकार के हवन, यज्ञ और अनुष्ठान आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगरमालवा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति जयशेखर की।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चाहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुन लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर और आइए लेते हैं ये पहला कॉल।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं।
1: अतीक खान।
0: अतीक भाई कहाँ से बोल रहे हैं आप? अतीक भाई हमें ये बताएं कि हिंदी भाषा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हिंदी भाषा सर बहुत अच्छी भाषा है सर, हिंदी भाषा। जी अच्छी भाषा सर, ऐसी है कि आप कहीं भी चले जाए, तो कहीं भी चले जाए, किसी कोने में चले जाए, आपको तब
0: बिल्कुल भाषा है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में तीसरे नंबर पर आती है।
1: जी जी सर।
0: यानी इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में।
1: जी सर।
0: तो हिंदी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए और गर्व के साथ ही हमें इसे बोलना चाहिए लोगों के बीच।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: और बता देंगे गाना कौन सा सुनवाए हम आपको? हिना का कौन सा?
1: हिना का सर जी सुनवाई टाइटल सॉन्ग।
0: ठीक है अतीक भाई, सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म हिना का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: हेलो,
2: स्वागत है आपका, फोन करें जी सुने में।
1: नमस्कार सर।
2: नमस्कार
1: सर जी, आपके लिए 14 ग्राम का नेता निकल से बसंतपुर में बात कर रहे सर।
2: बसंत, हमें कुछ और बताएं कि पढ़ाई करने के बाद क्या सोचा है आपने?
1: सर जी, पढ़ाई करने के बाद हमने तो सर ये सोचा है, हमें तो सर गायक कलाकार बनना है सर।
2: बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, और हिंदी भाषा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे?
1: सर हिंदी भाषा एक अपने माने मतलब भारत की एक ऐसी प्रमुख भाषा है कि सर हर जगह मतलब उसका इस्तेमाल भी होता है। सर सबसे अच्छी है मतलब हिंदी भाषा। हम लोगों को यहाँ पे भी, हम लोग मतलब चित्रकूट में रहते हैं,
2: हाँ हाँ,
1: तो वहाँ पे सर ज्यादातर तो भोजपुरी भाषा, लेकिन हिंदी में भी अगर अपन जैसे कुछ बोलते हैं उनको,
2: हाँ हाँ,
1: वो समझ जाते हैं, और बुंदेलखंडी में उतना नहीं समझ पाते वहाँ पे।
2: और हिंदी भाषा में एक दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करती है।
1: जी सर।
2: और महान साहित्यकार हुए हैं मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद, भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, ये बड़े बड़े नाम रहे जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है।
1: हाँ, वही तो है सर, यही तो है अपने मतलब देश की एक परिभाषा हिंदी का।
2: और बोलने में भी मीठी लगती है, सुनने में भी मीठी लगती है।
1: जी सर।
2: तो बताएं गाना कौन सा सुनवा है हम आपको?
1: सर गाना हमें मूवी का तो सर नहीं नाम मालूम, गाने के बोले सर ये जीवन जितने बार मिले।
2: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म बंजारन का ये गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करें जी सुनी में।
3: ग्राम बच्चिया गंगे से गणेश अहर।
4: गणेश जी क्या करते हैं आप?
3: सर कुछ नहीं, अभी हम पढ़ाई करते हैं।
4: कौन सी क्लास में हैं?
3: सर अभी हम हैं कक्षा 8वीं में।
4: बहुत ही बढ़िया।
3: हिंदी के बारे में सर यही बात कहना चाहते हैं, हिंदी एक प्रमुख भाषा है और अच्छी भाषा हिंदी ही अपनी गांव की प्रत्येक भाषा है अपने सिटी और बुंदेलखंड की।
4: बहुत ही अच्छी बात है, हिंदी की महिमा बहुत ही निराली है। हिंदी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और हिंदी किसी दूसरी भाषा की विरोध में कभी नहीं होती है, वो सभी भाषाओं के अच्छे अच्छे शब्द को भी अपने पास ले लेती है। हिंदी में ही हमें बात करना चाहिए, हिंदी में बात करते समय हमें खुशी महसूस होनी चाहिए।
3: जी सर।
4: गणेश जी बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
3: गदर मूवी का सुनवा देना कोई भी गाना।
4: गणेश जी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, सुनिए अपनी फरमाइश पर फिल्म गदर का ये गीत।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ

0: और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो
4: जी, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने में।
3: जी सर नमस्ते।
4: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: सर आप जितेंद्र अखबार बोल रहे हैं? सर
4: जितेंद्र
3: जी
4: बंडा से।
3: बंडा से बोल रहा
4: था। अच्छा, क्या करते हैं जितेंद्र?
3: स्कूल में सर गार्ड है सर।
4: अच्छी बात है। अच्छा, स्कूल में जब रहते हैं आप तो हिंदी भाषा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: हिंदी भाषा में सर यही चाहेंगे, सब अच्छे से बात करें हिंदी में, अपने बुंदेलखंड की भाषा है जी, हिंदी सब पढ़ रहे हैं अपने यहाँ पे और बोल रहे हैं सर।
4: अच्छा अच्छा
3: जी।
4: हिंदी बोलते समय कैसा महसूस होता है आपको?
3: सर बहुत अच्छा लगता है सर।
4: अच्छा, जिस स्कूल में आप गार्ड का काम करते हैं उस स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं कि हिंदी में?
3: हाँ सर, इंग्लिश में ही बात करते हैं और हिंदी में करते हैं सर।
4: चलिए, हिंदी भाषा की यही तो विशेषता है भाई कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा का विरोध कभी भी नहीं करती है। हिंदी अपनी गति से आगे बढ़ती है और लोगों को अपनाने के लिए विवश कर देती है, अपने स्नेह, अपनी सरलता से और अपनी मिठास से। और हिंदी भाषा को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो बताएं जितेंद्र भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
3: हाँ सर, अमृत फिल्म को है सर गाना, दुनिया में कितना गम है।
4: तो आइए सुनते हैं जितेंद्र भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म अमृत का

0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन करेंगे गीत सुने में
0: जी। मैं अमित का चौक टेगरवाड कॉलेज से आपका दोस्त परमानंद बोल रहा हूँ सर।
1: परमानंद जी बताएं, क्या हालचाल है आपके?
0: बढ़िया है सर, बढ़िया।
1: और हिंदी भाषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
0: हिंदी तो मातृभाषा है सर, पहले हिंदी अच्छे माँ से सीखते हैं।
1: हाँ,
0: फिर स्कूल में जाके आपके गुरुजनों से सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही है आपने।
0: हाँ, फिर उसके बाद में सीखते रहते हैं। और हिंदी ऐसी है कि हर भाषा को अपने में ढाल लेती, अपना लेती है हिंदी।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। और हिंदी भाषा लोगों को जोड़ने का भी काम करती है।
0: बिल्कुल ऐसा कर लेती, जैसे पानी में कोई रंग मिला दे तो घुल जाता है। जैसे हिंदी में कोई भी शब्द मिला दो, उर्दू, फारसी और कोई भी शब्द हो। और इसीलिए एक भाषा पढ़ी थी अपन, हमने पढ़ी थी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में।
1: हाँ,
0: उसको बोलते हिंदुस्तानी भाषा जी, जिसमें सब शब्दों का उसमें सम्मिलित होते हैं।
1: परमानंद जी, तो हिंदी के बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई।
0: चाव चंद की चंचल कर्ण खेल रही है जल थल में,
1: ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो हमारे दिलों के बहुत ही करीब होती हैं
0: जी।
1: तो बता दें, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
0: ये फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
1: सुनिए अपनी फरमाइश पर हाथी मेरे साथी, इस फिल्म का ये गीत।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के,
1: और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: नमस्कार, फोन करने की सुने में स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना।
5: जी, ग्राम बनेका तहसील गंदा जिला सागर से महेंद्र सेन आपका नियम है शुरू था।
4: हिंदी भाषा के बारे में क्या कहना है महेंद्र जी आपका?
5: सर, हम जहाँ भी जैसे अपने सागर स्टेशन सुनते हैं, बेरोजगार सुनते हैं, तो हिंदी सुनने को मिलती है और मनोरंजन होता है और अच्छे अच्छे गीत सुनने मिलते हैं
4: जी।
5: और हिंदी की बात ही अलग है सर, हिंदी अपनी पहचान है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपने प्रदेश से बाहर भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हिंदी भाषा में जब लोग बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है।
5: जी सर।
4: गाना कौन सा सुनवाए महेंद्र जी आपको?
5: सर, कुमार सानू जी की आवाज में सुना दो आप। वो सर थे ये आँखी क्या ऐसा कर है गीत,
4: वो आँखी ही क्या।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, यही गीत ये वाला सुना दीजिए सर।
4: सुनिए अपनी फरमाइश पर कुमार सानू का गाया हुआ ये गीत।

0: नमस्कार, स्वागत है फोन करेंगी सुने में।
1: सर पुराना गाना सुनना था। एक
0: गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे, अपना नाम बताएं।
1: महेंद्र कुमार विश्वकर्मा।
0: महेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: भगत सिंह बाग मती नगर थाने के सामने।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं महेंद्र जी?
1: सर हम फोटोग्राफी काम हमारा।
0: बहुत ही बढ़िया। और हिंदी भाषा कैसी लगती है आपको?
1: हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है सर
0: जी,
1: और हिंदी भाषा से बढ़कर कोई भाषा नहीं हमारे हिसाब से।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो हिंदी लोगों को जोड़ने का काम करती है, इस बात से सहमत हैं आप?
1: जी सर, जरूरी है, हिंदी तो है, हिंदी से जोड़ेंगे आदमी।
0: हाँ।

0: हम अगर कहीं भी दूर जाते हैं दूसरी भाषा वाले प्रदेश में और जब कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है जो हमें हिंदी में बात करते हुए दिखाई देता है तो ना चाहते हुए भी उससे बात करने का मन करने लगता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: सर हिंदी में ज्यादा बात भी हो जाती है।
0: हाँ, अपने विचारों को हम बड़े आराम से व्यक्त कर पाते हैं हिंदी में।
1: जी सर।
0: और हिंदी जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है और वैसी ही सुनी जाती है। यानी हिंदी में जो लिखा जाता है वो वैसा ही पढ़ा जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। महेंद्र जी बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
1: बरसात फिल्म का।
0: बरसात का। आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म बरसात का ये गीत।

और श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है हमारे देश और प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र। इसी मुद्दे की बात पर हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का, हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार। आप जहां गए हैं उन जगहों के बारे में हमें बताइए, और जहां जाना चाहते हैं उन जगहों के बारे में भी हमें जरूर बताएं। तो हमें रहेगा आपके फोन कॉल्स का इंतजार मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे हेमंत तिवारी, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। प्रस्तुति थी जय शेखर की, संयोजन था दीपक निषाद का।
1: कुछ देर में मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता से मन की बात साझा करेंगे, रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: चाय पत्ती वगैरह।
1: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
0: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड।
2: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
3: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
2: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
3: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें।

0: मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मियां सुनते आए देखते आए अब कहीं वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूँ यार।
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूँ?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई BND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम
6: का स्पैम कम होगा।
7: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई BND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
8: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
9: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ, सबका अकाउंट भी याद नहीं है।
8: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
9: कहाँ से पता चलेगा?
8: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
9: आज ही सर्च।
8: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
10: RBI कहता है
11: सरकार सतर्क रही है।
12: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
13: मन की बात, आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।

0: अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट के एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तर काशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल

पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है SE.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूँ। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूँ, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो
सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहाँ मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है।
मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम के

केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें, उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं

इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहाँ टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी

0: तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: जी आकाशवाणी दिल्ली है। इजे सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सितंबर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहम् देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षान् प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल स्ट्राइक इति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-20 शततम वर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीय सेनया पाकिस्तान देशे स्थितेषु आतंकवादिनां आश्रयस्थलेषु सर्जिकल स्ट्राइक इति कृतमासीत्। LOC इति नियंत्रण रेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतंकवादस्य विरुद्धं सैन्य कार्याचरणं कृतं तद्दृष्ट्वा जगदिदं आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढतया संपूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनम् उदाहरणं प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैक दशके बालाकोट विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियान पर्यन्तं भारत पुनः पुनः स्पष्टः संदेशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतंकवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतंकवादिनाक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिकविस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 28-शततम वर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 13 तिथौ दिल्ली नगरे घटितेषु क्रमिकविस्फोटेषु बहवः निरपराधाः जनाः हताः आसन्। अस्य कतिपय सप्ताहानन्तरमेव मुंबई नगरे 26/11 इति नाम्ना ख्यातं महद्भीषणम् आतंकवाद्याक्रमणम् अभवत्। सखायः पूर्वमपि प्रत्येकं आतंकवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानस्य विरुद्धं कार्याचरणं कर्तुं याचनं क्रियते स्म, किन्तु तस्मिन् विषये न तावत् गंभीरतया ध्यानं प्रदीयते स्म, समययापनमेव प्रतीक्ष्यते स्म, किन्तु अद्यतनीयं भारतं आतंकवादस्य विरोधे शून्य सहिष्णुता नीतिम् अवलम्बते। वयं च तस्याः फलमपि पश्यामः। सखायः अस्मिन् वर्षे 9/11 इत्यातंकवाद्याक्रमणस्यापि पञ्चविंशतिः वर्षाणि जातानि।

0: जनैः मित्रैश्च सह पूर्णेन आनन्देन उल्लासेन च समाचरन्तु। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि शुभकामनाः प्रेषयामि। बहु धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: का पहला गीत है लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी। फिल्म का नाम है चांदनी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

जलती मशाले लेके मिलनी की रातों में, मिलनी की रातों में। आगे आगे हम चले यारों की बरातों में, यारों की बरातों में। हंसे कोई भोली भाली।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरि का, फिल्म का नाम है डर।

0: अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।
1: सुनो।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
4: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम सुरीला सफर, तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत पोस्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती हैं। और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले। कहाँ घूमे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। नहीं नहीं, वहां चले जहाँ मिलता है सुकून। कहाँ? जहाँ तुम कहो। ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो। कहाँ कहीं रुकेंगे? हाँ, जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे। और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम? पर्यटन के नाम? या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो मुस्कुरा कर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली उस दुनिया की तलाश में जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो। क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम हम और ये वादियाँ कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच। लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे। एक कागज की कश्ती तिराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार जहाँ ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपनी प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुँचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश जी को याद किया जाएगा। और एक शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज पर्यटन दिवस है, नदी के दिन को याद किया जा रहा है, तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गीतकार कौन बताइए।

कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन। श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही, और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये कहाँ आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये पर्वतों के दायरे, और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज़्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया, तो ज़रा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है आपको बूझनी है, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नज़ारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत कुदरत के नज़ारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नज़ारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारे नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूं मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरे गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें, बोरीवली, मुंबई, सागर किनारे, दिल्ली पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं, विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली, मुंबई, समंदर किनारे, सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और, हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं, आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे, डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नज़ारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहाँ भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफ़ी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियाँ हो तो साथ में और भी छुट्टियाँ लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहाँ नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर? ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहाँ जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहाँ पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। तो कहाँ तक घटा है और कहाँ तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए। बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूँ। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़ी है तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमी आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहाँ यश चोपड़ा की फिल्मों की है, लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप ज़रा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुँचाते जा रहे हैं। अब हमें ज़रा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको पूछना है फिल्म का नाम और आवाज़ किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काली देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सपरिवार, हमने शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज़?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम पूछिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का यह सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद हैं, कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सकें या आपसे और कोई सवाल पूछ सकें, तो बस आज का सफ़र बस इतना ही। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

है। आइए अब आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत ठोकर फिल्म से लिया है, आवाज मोहम्मद रफी की है। सजन देवी ने इस गीत को लिखा, संगीत श्यामजी घनश्याम जी का।

मोहम्मद रफी की आवाज में गाई यकीन फिल्म के इस गाने के बाद आइए आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफी का ही गाया नीला आकाश फिल्म का गीत। इनका साथ दिया आशा भोसले ने। राजा महदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे मिलाकर फिल्म का गीत। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश 2:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी की सफाई के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ युवा नदी की सफाई का कार्य कर रहे हैं और उनके छोटे से प्रयास से पूरा समाज जुड़ रहा है।
1: हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर परिसर में स्थानीय जनों और जनप्रतिनिधियों के साथ मन की बात का श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में बंसल पंख मैराथन का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन और प्रसन्न मन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने लोगों से योग और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया।
2: महत्व की होती है, एक तरह से हम सब अपने शरीर के विभिन्न बाबा महाकाल की नगरी काल की नगरी उज्जैन में आज सुबह सवेरे बंसल न्यूज द्वारा मैराथन का राज्य स्तरीय आयोजन जो किया गया, मैं बधाई देना चाहूंगा। और ये बाबा महाकाल की कृपा है, स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के लिए सुबह कितनी महत्व की होती है, एक तरह से हम सब अपने शरीर के विभिन्न नाना प्रकार

0: के रहस्यों को समझे जाने, परमात्मा के दिए प्रसाद को संभालें और हमारे अपने जीवन के अभिष्ट की प्राप्ति करें।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि मैराथन जैसे आयोजन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। दो दिन का राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में पहले दिन आत्मनिर्भरता, विविधीकरण और उत्पादन वृद्धि, स्थिरता और जलवायु अनुकूल कृषि तथा डिजिटल कृषि, अवसंरचना, वित्त पोषण और जोखिम प्रबंधन पर चर्चा होगी। दूसरे दिन क्षेत्रीय सम्मेलनों से प्राप्त प्रमुख सीखों और पहले दिन की चर्चाओं के परिणामों पर विमर्श होगा। इंदौर में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आज से दो दिवसीय राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह और संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आज शाम 7 बजे अमर लता हमारी लता संगीत संध्या आयोजित होगी, जिसमें स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। समारोह के दूसरे दिन 28 सितंबर को सुविख्यात संगीत निर्देशक शांतनु मोहित्रा को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। उन्हें 5 लाख रूपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाएगी। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले बारिश का दौर तेज हो गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना और रीवा में तेज बारिश का अलर्ट है। जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश जारी है। पानी की बढ़ती आवक के कारण बरगी, जोहला और बिलगांव बांध के गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। प्रदेश में अब तक औसतन 35.6 इंच बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश से 95% से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में विभिन्न जिला प्रबंधकों के दल का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया गया। दल में मदरवास में स्व सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित वन स्टॉप फैसिलिटी समिति की संचालन प्रक्रिया और कार्य प्रणाली को समझा। नर्मदापुरम जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कर आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, बच्चों की खेलकूद गतिविधियां आयोजित कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। और आगरमालवा जिले के सरस्वती शिशु मंदिरों में कल नमामि भारतम कार्यक्रम के तहत लगभग 3300 से अधिक विद्यार्थियों अभिभावकों द्वारा एक साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस प्रबंधन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल SE.census.gov

0: GovInitio.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस के भी इस साल 1,000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीर खानों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानीत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसमें एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनेक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
5: इनेक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके जो पीएचसीज है और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इनेक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
4: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभि सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनुराघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक

प्रतियोगिता में भारत 4 स्वर्ण 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन उत्पादकता स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृता नंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृता नंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था ओपी नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इनसे पहले, उसका पहल में वो लेख छपा था कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

0: विलक्षण गायक
1: अरे ओरे हे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकुवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
1: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
0: वो है संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: Cíntia Regui.
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, निवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमीला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर, दिलीप वर्मा, राजू तामकर, रजन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और मम्मी पापा, नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे, गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रुपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूरजहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता, अर्जुन, टुकटुक, प्रिंस और एकांश गवाहनकर। मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉक्टर वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर।

सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार, विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरि कोचन, राजकमल सिनिग्धा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कोचन परिवार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू, दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मूंग की गुड़िया।

0: साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुज्तबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।
1: दिल

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अररिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालीगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। बजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत
2: Thank you.

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की, लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: गिंदी प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी। तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी?
3: अब क्या है
4: रमेश बाबू, आप लोगों के बहुत हला काम की है। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म की दुश्मनी निकारन सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
3: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
3: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने हो भी बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाते। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
3: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टाइम कहां जो गप्पे मारूं, चलती हूँ। राम राम।
3: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही, डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए इतना स्वार्थी उन्होंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो भी मां बन सकती है। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो हो गई।
5: ललिता इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो।
3: नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या? नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
5: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया,
3: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
5: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
3: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती, उनकी शादी न हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
5: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी न माने तो अभागा।
3: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और मोटू को लक्ष्मी मानते हैं।
5: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
3: बैठिए कमला बहन, चाय बना कर लाती हूँ।
5: अरे बंद बंद, दरवाजे मत तोड़िए।
6: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
3: नमस्ते।
6: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
5: ये बिहारी बाबू का घर है।
6: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिला। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
5: आपको किसकी शादी करनी है?
6: अपनी?
5: हाँ?
6: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बार नहीं पता है मेरा। देखिए देखिए।
5: ठीक है ठीक है।
6: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
5: अरे तब तो बैठिए, हमें आपके लिए तलाश थी। अरे ललिता, अरे जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
6: शगुन नहीं, बाकेलाल, बाकेलाल। मेरा नाम बाकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
5: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं? तब तो बात बन गई।
6: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
5: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है, हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
6: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी, दवा की दुकान खोली है मेरे, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव काजू खरीद लूंगा।
5: क्या आपकी माँ बीमार है?
6: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है, हम लोग फल मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
5: हाँ सो तो है, बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
6: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ, ये लीजिए जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें, लीजिए तो।
5: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, खाते पीते घर के हैं दादे बाबू।
6: बिल्कुल ठीक कहती है आप, अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला, तो माँ कहती है शादी कर ले।
5: अच्छा ये बताइए, शादी में खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
6: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को बिदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस, बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तो है।
5: अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
6: अभी कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
5: ललिता एक फोटो तो दे दो।
6: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
5: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
0: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता,
5: इसीलिए तो बड़े बूढ़े ने कहा है समय का सही उपयोग करना चाहिए।
0: कैसे समय, मैं कुछ समझी नहीं।
5: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
0: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
5: यही सही समय है।
0: कैसा समय?
5: उम्र के दौर का समय, इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
0: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
5: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए,

0: कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
1: अरे रागी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
0: प्यारी तो चुप रहे कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं।
2: अच्छा लीजिए चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
0: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं अनुमिक हूँ।
2: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज अनुमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते। आपके लिए अब भी समय है।
0: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको। इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
2: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
0: शायद अब वो समय नहीं है।
2: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
0: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
2: इतने रुपए थे, मैं यदि हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
0: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
2: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया।
0: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
2: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांगने से दूर और गोद में बच्चा सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
0: मगर कौन समझता है इस बात को। तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
1: जी जी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को।
2: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
0: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरे मजाक उड़ाते हैं।
2: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो, लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
0: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हम फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहले भी फूलों की हथकड़ी। तेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। मैं पहले के लिए मेरी बनना छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
3: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
2: हाँ, आपने समय को पहचाना है, कौन की मांग को स्वीकारा है।
1: बीवी जी, जिला पर ले आओ गर्मा गर्म चाय।
2: अरे चाय ही नहीं, मिठाई अभी। जा,

0: तुम्हारी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। भाव में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी।

0: जो चेहरे पर छवि प्यार बनकर उभरती है।
1: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती हूँ मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प कर रहे हैं।
0: हाँ, इस समय तो तू कथा पड़ी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मखमली नजर आ रहे हैं। क्यों हुआ? सुन रही है वहाँ शोर? कैसा शोर है ये? शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार। यही है मेरे सपनों का राजकुमार, घर में आई नजर का भी उसको ख्याल नहीं। वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो बिल्कुल पिंजरे में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ही आई है। ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है। यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्म है। पति कैसा भी हो, इस डोर में बनने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा। तुझे इतना साज श्रृंगार करने की बात भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों?
1: क्यों नहीं? ताकि तुम्हें को किसी की नजर न लगे।
0: ऐसा नहीं है, ताकि वो वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
1: कौन हो तुम? क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
0: हाँ, हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
1: आप इसे क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी, ये कह सकती हूँ।
0: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
1: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
0: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार न करने लगना,
1: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
0: चले गई
2: यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ, पास आओ। ये सीधे नहीं रखता।
1: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
1: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो जरूर है, जैसा होता है सुंदर चेहरा होना चाहिए।
1: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमय। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: मैं
1: बीच में उन्हें तकिया रखे देती हूँ, ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी।
2: अच्छा, अब क्या करूँ?
1: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
2: रानी तुम क्या कर रही हो?
1: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
2: बहुत अच्छे। अब क्या कर रही हो?
1: अब प्रेम में फूल कूद रही हूँ।
2: फूल? ये फूल कहाँ से मिला था? वह तो खाली हाथ है।
1: ये फूल बसंत ने दिया।
2: मेरे गले में बसंत? अरे वाह!
1: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर?
1: क्षण-क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।

0: अरे
1: अम्मा का दूर रहिए, सीमा का प्यार कीजिए।
0: मैं
1: जो करना है

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही
1: नहीं? नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिल जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्जी क्या है?
1: हिंकुल मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज को धरा ही नहीं है ना। मगर यहाँ तो कोई इंतजाम ही दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दो।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहे तो तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीलू दीदी कहाँ गई?
3: आंगन में गई है, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीना दीदी,
3: नीना दीदी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कितों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहां, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो बढ़ रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
2: अरे नीना दीदी तो बड़ा आवाज पड़ी है। दीदी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
2: चलो मैं भी चलती हूँ।
1: नहीं भाभी आप चिंता न करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, मंगलवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
0: मैं चलूँ तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी।

0: जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा बड़ी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी।
1: हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊ, तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात की थी, भी तुम्हारे साथ थी। थी, मगर सामने तो नहीं। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं लेना चाहती ना?
0: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
1: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो। क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा? उन्हें जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
0: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है।
1: इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ।
0: इस पत्र का क्या होगा?
1: वो
0: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
1: फिर क्या होगा? कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
0: मुक्ति?
1: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है,
0: जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।

0: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

0: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बनी म्यूजिक अरेंजर और फिर बनी म्यूजिक डायरेक्टर। पहली बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम

0: मैं निकला ओ गड्डी लेके
1: दास्तान बेमिसाल संगीत की
0: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा
1: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार

0: रोशन जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी है, संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
1: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूँ कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
1: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे?
1: खुद ही गा रहे।
0: गाना कौन सा था?
1: गाना ऐसे आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी जी।
1: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून आया हुआ उनको उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस
1: एक्सीडेंट,
0: गाड़ी जो है वो तबाह हो गई।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
0: जी।
1: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें। हाँ हाँ हाँ,
0: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
1: सारी उन्होंने वहां निकाली।
0: गजब की बात है ये तो।
1: सारे संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया, तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया।
0: खत्म हो गया,
1: नाउ ही इनटू म्यूजिक।
0: गजब की बात है ये।
1: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ,
1: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ,
1: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी

0: ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद 1-1.5 घंटा गा रहे थे वो।
1: बाप रे।
0: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की, कौन सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
1: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था, वो गाना या सुन लिया
0: हमारे कदम रुकी गए थे।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाए और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भातों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन मदन जी के चलते वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था तब उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी,
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंज किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग नहीं, तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट करा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब, सब बड़े भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, ही वाज सो ड्रंक कह तो, या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ के, बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट डू एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: तमाम चीजों का। गाना देखे, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना

0: डॉक्यूमेंट्री है उसको एक सैड और एक और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी जी एक ही गाने
0: को याद है कि अरे यार मधु जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा।
1: इसमें मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ वो की फ्लूट है और उसकी मेलोडी जी ने बजाया
1: है,
0: वो सैक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है,
0: मेलोडी सिंह करके
1: जी,
0: जो पंचम जी के असिस्टेंट भी थे
1: बिल्कुल,
0: और हमने साथ में बहुत काम किया।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था, बहुत लंबी बातें रिकॉर्ड की थी।
0: वो मतलब वैसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं
1: जी, बिल्कुल
0: उनसे शुरू हुई उन पे खत्म हो गई,
1: क्या
0: ऐसा हुआ।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था डरियाज। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग,
1: म्यूजिक के लोग खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा था। मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यहाँ गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ कर चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब।
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब,
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक बनाऊंगा।
1: अद्भुत
0: बात है
1: ये, मुझे आज भी है।

0: कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज सोनिक
1: जी
0: यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया। हमारी कुछ बात नहीं तो बोला, मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था, मैंने ये बात सही, उन्होंने गालियां बोले, गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते। मगर मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे, एंड इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: अरे तू तो चले गया, किसको जवाब दो,
1: क्या दौर था, क्या लोग थे,
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की, अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: एक साहिब साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजदूर साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया
1: जी। जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
1: जी जी जी,
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, जिनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
1: अच्छा,
0: उन्होंने बुला लिया उनको, और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे,
0: ये उनके अरेंजर थे।
1: अच्छा,
0: ये उनके सलाहकार थे केरसी और श्याम राव, भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रिसल हो गया 10:15 बजे
1: जी।
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: छोटे कद के थे,
0: पहली दफा देखा उनको
1: जी।
0: तो आते किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी है ऐसे अंदर चले गए
1: जी।
0: अंदर से माइक्रोफोन के बोलते, हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, गोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से, अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, केसी श्यामराव म्यूजिक सुनाओ, फिर चुप।
1: अरे
0: ये मैं, हम सोच रहे हैं नए बच्चे की ये क्या हो रहा है, म्यूजिक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुना हुई, हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है, तो कैसे बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे। हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओगे ना सुना, अब सब थालियां बजा, अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू।
1: ये प्यार था, ये
0: शुरू हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ,
1: क्या बात है,
0: ऐसा एटमोसफियर। आप सोचोगे वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब बजाएंगे,
0: तब हम बजाएंगे,
1: गजब गजब।
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी। उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए,
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए।
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: एस जी बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें बांटी है।
0: बर्मन साहब का तो बजा ही रहे थे क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी जी,
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके,
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी, रिहर्सल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मयूरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, मैं वो स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया, मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब,
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मैंने वो पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया। तो उन्होंने को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए,
1: अरे बाप रे,
0: जैसा उत्तम बजा रहा है
1: गजब।
0: यूनुस जी, मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, 2nd डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह,
0: मैं 3rd रो से 1st रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो, और अपनी धुन के पक्के,
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती,
0: और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आमतौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा,
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम मासूम उन्होंने तो छोड़ के चले गए। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको काम करना है इसका, गोल्डी का बहुत इमीडिएटली काम करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैंने कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी में कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत मजा है, बासुम भी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊ। कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा।
1: हाँ।
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी
0: मेरे को सबका ऑफर आया।
1: जी
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लेडी का ऑफर आया, अनु मलिक मेरे पीछे, शंकर सिंह का ऑफर आया, आर डी बर्मन का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने मदन जी का ऑफर आया।
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी
0: दूसरे उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊंगा?
1: जी
0: ऐसे म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट ऐसे अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते,
1: दादा के लिए भी बजा।
0: हाँ हाँ दादा के लिए, लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था।
1: जी
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
1: हाँ हाँ
0: तो फिर वो ग्रुप फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं।

0: गौतम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सबका बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो,
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया, और अन्ना क्या अभी बजाया,
1: अन्ना क्या बजाया, अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमय किस्सा है वो,
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री होगी तो सब साइलेंट हो गए।
0: अच्छा,
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, हम उसके मुलाजिम है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन है, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त है।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा,
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आपको सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पुखड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू हुआ, अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू हुआ और अंदर से कट हुआ,
0: अरे अरे,
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस पे,
1: क्रॉस पे कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अरे उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे
0: जी जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अरे हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे
0: हैं,
1: रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो ये क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है,
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: शुरू हुआ, डेक खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी,
1: ओके हो गया, ये छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: दादा याद है,
1: नहीं वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे,
0: सुबह
1: अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी।
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत,
0: लगातार भागदौड़ होती,
1: लगातार भाग।
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब उनके साथ ही रहता था
0: जी।
1: तो केसी जी, गोपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ
1: ज्यादा गुजरी, जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
0: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील थे, म्यूजिशियन थे, वो भी गुजर गया अभी, भज्जी वकील, गोपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केसी जी
0: जी,
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
0: जी,
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
0: जी,
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
0: पार्टियां वो लोग करेंगे,
1: पार्टियां वो लोग करेंगे क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
0: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
1: बदमाश तो सारे थे सारे बदमाश थे
0: जी, जी।
1: म्यूजिशियन जो है ना
0: जी
1: एक्चुअली बदमाश होता है।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि
0: आप बहुत ही थी बदमाशी।
1: हाँ नहीं नहीं हमारी बात हमारी बदमाशी भी क्या म्यूजिक में निकलती थी।
0: अच्छा
1: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलाहाबाद साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बोर्न नॉट मेड।
0: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
1: जी मैंने राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
0: जी,
1: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
0: 600 फिल्में तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
1: हाँ बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे ऐसा मुझे एक्टर पैदा नहीं होगा।
0: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया।
1: मेरा एक पांव मद्रास में एक पांव बॉम्बे में।
0: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे
1: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
0: आई,
1: और कभी कभी उनके बैकग्राउंड जो होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
0: वाह,
1: और हम साथ में खाना खाते थे साथ में चलते थे।
0: लैंग्वेज की प्रॉब्लम
1: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
0: क्या बात है इलैयाराजा की, म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है
1: बहुत।
0: तो कुछ यादें बताइए।
1: मैं आपको बताऊं यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा मुझे एक्टर कोई नहीं है।
0: क्या बात है,
1: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
0: जी,
1: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
0: वाह,
1: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है ये ही नोस।
0: वाह,
1: तो ये मोस्ट लर्नेड हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, सी राम चंद्र, संजय जयकिशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला। एक म्यूजिशियन लिखने वाला चाहिए, एक ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
0: जी,
1: वहां पे अरेंजर की जगह है
0: जी।
1: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
0: बिल्कुल,
1: बट इलैयाराजा की वो किसी की जगह नहीं है,
0: इलैयाराजा का खुद करेंगे
1: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा डायरेक्टर है।
0: क्या बात है,
1: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूँ, जब मैं अपना काम करता हूँ मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूँ, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
0: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है।
1: हाँ सुरेश वाड़कर
0: जी, आपने बजाया?
1: मैंने बजाया।
0: ऐ जिंदगी गले।

0: ऐसे की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब, उनसे जुड़ी भी यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जब फिल्में आई थी
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी
0: नहीं आपने कर, मना कर दिया
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा, फॉरन ये काम किया ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भाई ये प्रोड्यूसर को बोला कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दे। अच्छा कब दोगे, 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे
0: जी।
1: तो नय्यर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मुरली जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वही पर मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नय्यर साहब की शैली,
1: पूरी नय्यर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नय्यर साहब नय्यर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नय्यर साहब है, आप कॉपी हो
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नय्यर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नय्यर सबको ओरिजिनल सुनते है ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
0: जी जी।
1: रिश्ते भी अच्छे थे, नमस्ते नमस्ते थे।
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब, एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीकदान,
1: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा, मैं तो अपने टेलीफिल्म कर रहा था यशराज फिल्म की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है,
1: टेलीफिल्म,
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली लड़के
0: जी
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको इसको,
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है?
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी।
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
0: दो से ज्यादा नहीं,
1: दो से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद ये रात को 9 बजे बैकग्राउंड भजन किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 एक-एक बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: जिंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए, लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए?
1: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्में, जो हिट गाने हैं सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली, हाँ
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गज़ल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
1: जरूर सुनिए, उसमें वायलेंस वो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होता,
1: क्या होता है,
0: है ना? तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
0: शंकर शंभू कबाल से?
1: जो कबाल थे, मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने तो कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। उन्होंने नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: क्यों सब, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी
0: जी जी,
1: हाँ 60s 65 मोस्टली 65
0: जी,
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिशियन थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बीएन बाली, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिशियन थे, सब ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
0: अरेंजर के तौर पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में 2 गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
0: जी
1: 2 गानों का अरेंजमेंट करना, तो 2 गाने सुबह 2 गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए 2 गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे,
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं आज पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपए 2 गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपए ले जाता है, कोई 70 रुपए ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
0: ओ,
1: पैसे मांग लिए, जाओ आउट। अब बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
0: जी,
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
0: जी।
1: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता था, तो आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूंगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई,
1: ट्यून बनाई, और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते हैं जिनको ट्याल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछते थे कि गाना तुम इसको कैसे करना है, इसको या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है फिल्म हम आपके हैं कौन।
0: क्या बात है,
1: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है,
0: ये भी बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे, लेकिन अरेंजर आप थे।
1: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक

0: सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट है वो मैंने आपको बताई है
1: जी जी।
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
1: फर्स्ट म्यूजिक सेकंड म्यूजिक
0: साहब म्यूजिक खुद मेलोडी खुद बना देते थे
1: जी।
0: नौशाद साहब हो गए, संगीतेशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली लिखता था।
1: अच्छा अच्छा, अच्छा।
0: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना वजाना, कॉर्ड डाला, वायलिन बजाएगा, चलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे,
0: हाँ।
1: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
0: क्योंकि म्यूजिक सारा मेरा होता था ना
1: जी। और वो पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका चलन क्या होगा, वो सब आप
0: मदन साहब के बजा दिया
1: जी।
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया
1: जी जी।
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके ओन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो बादल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए
1: जी, जी।
0: उत्तम जगदीश थे
1: जी जी।
0: तो सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
1: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट जिस तरह से चलती है, और वो तो वो सारा आपका तैयार किया,
0: सारा मेरा बनाया हुआ है
1: जी।
0: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था तारा तत्ता तारा तत्ता, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी।
1: हाँ वही बात है।
0: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
1: क्या बात है,
0: और बहुत लोगों ने यूज किया वो
1: एक आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है
0: बिल्कुल।

0: यहाँ
1: वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
0: हाँ
1: या मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
0: हाँ।
1: वो बहुत कमाल है।

इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 2 अक्टूबर गांधी जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि बापू ने हमें स्वच्छता का मंत्र दिया है। स्वच्छता से जुड़े प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनभागीदारी से नदियों की सफाई ऐसा ही सराहनीय प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जनगणना केवल आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि हर नागरिक का राष्ट्रीय दायित्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ही है बल्कि यह बहुक्षेत्रीय हो गया है, इसलिए भारत ऐसी रक्षा रणनीति बना रहा है जिसमें मौजूदा जरूरत के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए भी हथियार विकसित किए जा सके। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि आने वाला समय आयुर्वेद का है, आवश्यकता उसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की है। श्री पटेल ने आयुर्वेद महाविद्यालय को शिक्षा, शोध, सेवा और जन जागरूकता को एक साथ आगे बढ़ाने का केंद्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज भारत के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं भारत ने आज स्क्वैश में 2 रजत पदक जीते। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित भारत के पदकों की संख्या 30 हो गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे विश्व पर्यटन दिवस पर। साथ ही हमारा विषय रहेगा विश्व बधिर दिवस। संदर्भ है प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को एवं विश्व नदी दिवस। संदर्भ है प्रतिवर्ष सितंबर के चौथे रविवार को। दोस्तों, क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिक गतिविधियां आपकी प्रतिभा को और अधिक निखारती हैं विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस पर। साथियों, पर्यटन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल मनोरंजन या घूमने फिरने का साधन नहीं, बल्कि विभिन्न देशों, संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को समझने का भी माध्यम है। पर्यटन के महत्व और उसके विकास के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। साथियों, विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1980 में विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। 27 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन के संविधान को स्वीकार किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में पर्यटन के महत्व को बढ़ावा देना तथा लोगों को पर्यटन से होने वाले लाभों के प्रति जागरूक करना है। हर वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के लिए एक विशेष विषय निर्धारित किया जाता है, जिसके माध्यम से पर्यटन से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दोस्तों, पर्यटन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यटन से होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होती है। दोस्तों, पर्यटन का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। जब लोग दूसरे राज्य और देशों की यात्रा

यात्रा करते हैं तो उन्हें वहाँ की भाषा, भोजन, वेशभूषा, कला, संस्कृति, संगीत और परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है। इससे विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है। साथ ही भारत पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध देश है। यहाँ हिमालय के बर्फीले पर्वत, राजस्थान के किले, महल, केरल के समुद्र तट, गोवा के तट, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, उत्तर भारत के धार्मिक केंद्र और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ताजमहल, खजुराहो, सांची स्तूप, अजंता एलोरा की गुफाएं, कश्मीर और वाराणसी जैसे स्थान भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विविधता को दर्शाते हैं। दोस्तों, भारत में धार्मिक पर्यटन का भी विशेष महत्व है। लोग तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों की यात्रा करके आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त वन्य जीव पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और चिकित्सक पर्यटन भी धीरे धीरे महत्वपूर्ण हो रहे हैं। दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस हमें यह संदेश देता है कि पर्यटन केवल यात्रा और मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। पर्यटन लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच समझ विकसित करता है। हमें पर्यटन का आनंद लेने के साथ साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा भी करनी चाहिए। यदि पर्यटन को जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ किया भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व बधिर दिवस पर चर्चा करने का। साथियों, विश्व बधिर दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिवस बधिर एवं श्रवण बाधित लोगों के अधिकारों, उनकी क्षमताओं और समाज में उनके सम्मान भागीदारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का उद्देश्य यह संदेश देना है कि सुनने में कठिनाई किसी व्यक्ति की प्रतिभा और विश्व बधिर दिवस का प्रमुख उद्देश्य बधिर लोगों की समस्याओं को समझना और उनके प्रति समाज में संवेदनशीलता विकसित करना है। कई बार श्रवण बाधितों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस दिवस के माध्यम से उनके अधिकारों और आवश्यक सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। यह दिवस हमें यह भी सिखाता है कि बधिर व्यक्ति को दया की नहीं बल्कि समान अवसर और सम्मान की आवश्यकता है। यदि उन्हें उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो वे समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त समाज में जागरूकता की कमी के कारण कुछ लोग बधिर व्यक्तियों को कम सक्षम समझ सकते हैं। ऐसी सोच को बदलना आवश्यक है। बधिर व्यक्ति भी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा, कला, खेल, विज्ञान और तकनीक अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, बधिर बच्चों के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है।

विद्यालयों में सांकेतिक भाषा, कैप्शन, सहायक उपकरण और विशेष शिक्षण पद्धतियों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आधुनिक तकनीक ने श्रवण बाधित लोगों के जीवन को काफी आसान बनाया है। श्रवण यंत्र, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज और लाइव कैप्शन जैसी सुविधाएं संचार में सहायता करती हैं। समाज को भी सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक होना चाहिए। दोस्तों, विश्व बधिर दिवस केवल एक विशेष वर्ग के प्रति जागरूकता का दिन नहीं है, बल्कि समानता और समावेश का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। यह हमें समझाता है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी शारीरिक कठिनाई से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तित्व से होती है। यदि समाज समान अवसर, सम्मान और सहयोग प्रदान करे, तो बधिर व्यक्ति भी आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विश्व बधिर दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भेदभाव को समाप्त करेंगे, सांकेतिक भाषा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर देने वाला समाज बनाने में अपना योगदान देंगे। दोस्तों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

अभी सुन रही थी आप ये गीत। साथियों अब समय हुआ है कम आज की बात में हमारे अगले विषय विश्व नदी दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों विश्व नदी दिवस हर वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नदियों के महत्व को समझना और उन्हें स्वच्छ सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नदियाँ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बिना मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधों का जीवन कठिन हो जाएगा। दोस्तों भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। हमारे देश में गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी जैसी अनेक बड़ी नदियाँ हैं। नदियों से पीने का पानी खेती के लिए बिजली और मछली जैसे कई संसाधन भी उपलब्ध होते हैं। कई शहर गांव नदियों के किनारे बसे हुए हैं। नदियाँ हमारे इतिहास संस्कृति और धार्मिक जीवन में विशेष योगदान देती हैं। दोस्तों नदियाँ केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है। नदियों में अनेक प्रकार की मछलियाँ और जीव रहते हैं। नदी के आसपास पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। नदियाँ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सहायता करती हैं। दोस्तों नदियों का पानी धरती के जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए नदियों को साफ और स्वच्छ रखना हमारे पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। साथियों नदी कारखानों का गंदा पानी कई नदियों में चला जाता है। लोग नदियों में प्लास्टिक उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों नदियों में बढ़ता प्रदूषण मनुष्य के लिए भी हानिकारक है। यदि हम नदियों को साफ नहीं रखेंगे तो भविष्य में स्वच्छ पानी की समस्या बढ़ सकती है। नदियों को बचाने के लिए हमें कुछ सरल कदम उठाने चाहिए। साथियों सबसे पहले नदियों में कूड़ा और प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए। कारखानों और शहरों के गंदे पानी को साफ करके ही नदी में छोड़ा जाना चाहिए। नदी के किनारे अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों सरकार के साथ साथ आम जनता की भी यह जिम्मेदारी है कि वे नदी की सफाई रखें। साथियों विश्व नदी दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नदियों में कूड़ा नहीं डालेंगे, पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और नदी के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। साथियों अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

भी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय सांस्कृतिक गतिविधियाँ आपकी प्रतिभा को और अधिक निखारती हैं पर चर्चा करने का। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन सीखने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का सबसे अच्छा समय होता है। पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना भी बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक गतिविधियों में नृत्य, संगीत, गायन, चित्रकला, नाटक, कविता, कहानी लेखन और लोक कला आदि शामिल हैं। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने में मदद करती हैं। दोस्तों, हर विद्यार्थी में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को नृत्य, किसी को चित्र बनाना और किसी को मंच पर बोलना अच्छा लगता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों को अपनी रुचि और प्रतिभा दिखाने का अवसर देती हैं। जब विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता या कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वे लोगों के सामने अपनी बात रखने और अपनी कला प्रस्तुत करने का तरीका सीखते हैं। इससे उनका व्यक्तित्व निखरता है। दोस्तों, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होती हैं। कई विद्यार्थी लोगों के सामने बोलने, मंच पर आने से डरते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बार बार भाग लेने से उनका डर धीरे धीरे कम होता है। वे बिना झिझक अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करना सीखते हैं। साथियों, सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों को नए विचार सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। चित्रकला, कविता, कहानी और नाटक जैसी गतिविधियों में विद्यार्थी अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। इससे उनकी रचनात्मक सोच बढ़ती है। इन गतिविधियों से विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते बल्कि अपने आसपास की दुनिया को अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी करते समय विद्यार्थियों को समय का सही उपयोग करना पड़ता है। वे नियमित अभ्यास करते हैं, अपने कामों को सही समय पर पूरा करते हैं। इससे उनमें अनुशासन की भावना विकसित होती है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम समूह में किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। इससे उनमें सहयोग, मित्रता और एकता की भावना विकसित होती है। दोस्तों, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हमें अपनी संस्कृति और परंपरा से भी जोड़ती हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, त्योहार, पारंपरिक कला, नाटक के माध्यम से विद्यार्थी अपनी संस्कृति को समझते हैं। इससे उनमें अपनी भाषा, परंपरा और देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि प्रतिभा, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, अनुशासन और सहयोग की भावना को बढ़ाने का माध्यम भी है। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ।
1: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है
3: मैं सागर हूँ।
2: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
4: सागर को बनाए अपने सपनों का सागर।
2: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
5: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
2: मैं सागर हूँ, इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
6: और नासिर का
2: नमस्कार। सागर का हर चौराहा हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। मैं सागर हूँ, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज एक साल पूरा कर रहा है और इसकी 52वीं कड़ी लेकर आज हम हाजिर हैं। और सबसे अच्छा सहयोग ये है कि हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम कमिश्नर महोदय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और श्रोता आपके मुख से कुछ बातें सुनने के लिए आतुर है।
7: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आकाशवाणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं सागर हूँ कार्यक्रम के 52 एपिसोड सक्सेसफुल जो है आप लोगों ने कंप्लीट किए। साथ ही ये मुख्यतः आपने सागर नगम से संबंधित सभी विषयों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, जिसमें हमें दो तरफा एक तरीके से संवाद करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। ना केवल सागर नगर निगम की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच गई, बल्कि जनता के माध्यम से जो सुझाव आने थे वो भी सागर नगर निगम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और प्रेरणादायक रहे। जैसे कि आपको पता है कि मैं जब जब समय मिलता है मैं सागर हूँ कार्यक्रम को जो है सुनता हूँ, और उसमें बहुत आयात में श्रोताओं के जो सुझाव आते हैं वो भी काफी उपयोगी और व्यवस्थित होते हैं। उनमें एक जो चीज़ जो बड़ी रूप में जो सुझाव आया कि जो है खासकर सिविल लाइन एरिया में वहाँ पर वॉशरूम या शौचालय की जो है स्थिति की कमी देखी गई है, उसके लिए सागर नगर निगम ने आपके माध्यम से उस बात को महसूस भी किया और वहाँ पर अब हम आपको बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि वहाँ टेंडर लग गया है और जल्दी ही वहाँ पर इससे का पूर्ति की जाएगी, जिससे वहाँ के आम नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो।
2: जब हम बात कर रहे हैं मैं सागर हूँ के विकास की, कि सागर का विकास किस किस क्षेत्र में हुआ, वैसे तो हम सब बिंदु जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि चौराहों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, लाइट की व्यवस्था अच्छी हुई, पानी की, कचरा प्रबंधन, बहुत सारे हमने विषयों को छुआ है। कुछ ऐसे विषय हैं जो परिवर्तन आपने देखा कि इन सब के करने से क्या परिवर्तन आपने जनता में देखा या ऐसा लगा आपको?
7: देखिए कई सारे विषय हैं जिनसे जनता जो है सीधे जुड़ी हुई है और निगम भी जो है सीधे जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि बिजली, सड़क, पानी, नाली, सफाई, कचरा सेग्रीगेशन, तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक लोगों में के जो आदत जो डेवलप हुई है कि जैसे मैं सागर हूँ इस कार्यक्रम का भी नाम है, ऐसे ही आम आदमियों में भी अपने जो सागरियत जो कहना चाहिए कि एक सागर को लेके जो पजेसिव होना वो बात उनके अंदर एक डेवलप हुई, खासकर के

0: साफ सफाई को लेके, यहाँ के जो चीजें हैं उनको लेके वो अवेयर हुए हैं। इसके अलावा जो एक चीज है कि उसमें सुरक्षा संबंधी विषय, खासकर महिला सुरक्षा संबंधी विषयों में कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ा है। उसका एक बहुत बड़ा जो रोल लाइट व्यवस्था और जो हमारे चौक चौराहे डेवलप हुए हैं, उससे न केवल सागर के लोगों में, इसमें सागर को लेके एक सकारात्मकता आई है, साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के मन में भी सागर को लेके एक बेहतर इमेज बनी हुई है कि पहले के सागर और अब के सागर में उनको अंतर देखने को मिलता है, तो उनको अच्छा लगता है। जी
1: जी, अब जानना ये चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि देखते देखते बहुत सारे चौराहे ऐसे हो गए हैं कि बहुत सुंदर हो गए हैं, और अभी भी क्या गुंजाइश है कुछ और?
0: निश्चित रूप से, जैसे कि अगर हम देखें कि अभी हमने पिछले दो वर्ष में जो पहला चौराहा था श्री कृष्ण अर्जुन रथ का जो चौराहा था, जो शीतला माता मंदिर के पास, उसमें वंदे मातरम चौक है, संविधान चौक है, कलमदाबाद चौक है, आपका समुद्र मंथन चौक है, कबीर स्तंभ है, आपका पीली कोटी चौराहा है, यहाँ पर योग चौराहा है, इसके बाद और भी जो है सिविल लाइन एरिया वगैरह है वहाँ पर भी हमने सेल्फी पॉइंट वगैरह सब डेवलप किए हुए हैं, उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन आया। हाँ, अभी कुछ चौराहे हैं जहाँ पर अभी बिल्कुल गुंजाइश है, जिनमें कनेरा देव का चौराहा है, इसके बाद आपका राजघाट चौराहा है, दिल्ली चौराहा है, इसके बाद आई जी बंगला जो है चौराहा है, ये हम लोगों के निगम की प्रायोरिटी का जो है हिस्सा है, और सिविल लाइन में भी हम लोग ये गुंजाइश तलाश रहे कि वहाँ पर भी कुछ हो पाए। तो ऐसे अभी कुछ चौराहे हैं, 5 से 6 चौराहे अभी और जो है सागर शहर के अंदर डेवलप हो सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से सागर का आकार और उसके गौरव में जो है निश्चित रूप से अच्छा लगेगा।
1: जी सर, और जैसा आपने चौराहों की बात की, तो जो युवा शक्ति है हमारी, उनको सेल्फी पॉइंट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, तो क्या कुछ ये भी गुंजाइश बन रही है कि अभी और नए सेल्फी पॉइंट्स आएंगे?
0: हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जिस तरह का आज हमारा यूथ है या जो जैन जी हम इनको बोल रहे हैं, उनके लिए सेल्फी पॉइंट निश्चित रूप से पसंद है। इससे वो न केवल स्वच्छता को लेके जागरूक होते हैं, बल्कि डेवलपमेंट के प्रति भी उनके समझ होती है और चीजों को व्यवस्थित रखने में उनका एक योगदान आता है। साथ ही जो सेल्फी पॉइंट होते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक अपनी स्टोरी लिए रहते हैं, उनका एक अपना कोई एक मैसेज होता है, उद्देश्य होता है, उससे भी वो क्लियर होते हैं। तो इस बात में सागर नगर निगम का बहुत ज्यादा जोर है कि इस तरह के और पॉइंट जो है बनाया जाए, जिससे सागर की जो गौरव आता है उसको लोग ज्यादा से ज्यादा जान सके।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है, सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान। सागर को बनाए अपने सपनों का सागर, अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
2: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब चलते चलते एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि क्या मैं सागर हूँ कार्यक्रम अगले साल भी जारी रहेगा और कुछ नयापन लाएगा?
0: निश्चित रूप से आप है सागर नगर निगम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अपने मैसेज को आकाशवाणी के माध्यम से जो है डिलीवर करें, तो निश्चित रूप से मैं हूँ सागर कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से, निगम के माध्यम से आगे भी जारी रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
2: और नासिर को।
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है, सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान। सागर को बनाए अपने सपनों का सागर, अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
2: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 5:30 40 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए संगीत सरिता। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहली गजल।

0: स्वामी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गजल।

0: सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमों को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तराने नए पुराने
3: तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लीजिए अब सुनिए गुमराह फिल्म का गाना। आवाज है महेंद्र कपूर की, साहिल लुधियानवी की बोल, संगीत है रवि का।

0: संगीत के साधक।
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

0: इससे कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेलुलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है अवतार।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीत, फिल्म का नाम दादी माँ।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गुमराह फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत रवि का।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

0: राज इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी महेंद्र कपूर की, गीत लिखा था साहिर ने, संगीतबद्ध किया था रवि ने।
1: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
2: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
3: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
2: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहाँ हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
0: अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

निकाह। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी महेंद्र कपूर और सलमा आगा की। गीत के बोल लिखे थे हसन कमाल ने और संगीत था रवि का। गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए लोक रंग। आइए सबसे पहले सुनते हैं अनीसा बेगम से ये देवी गीत।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे बाय।
0: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
7: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
6: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
7: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
8: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
9: और अब सुनिए अजुद्दी दास कबीरपंथी से ये डिमरे आई।

इस देवी गीत के साथ कार्यक्रम लोकरंग अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर

दिसंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा

0: जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोता, आपसे कुछ ही समय पश्चात शाम 7:10 पर आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। ग्राम सभा, ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:20 पर। चित्रपट संगीत आप सुनिएगा रात्रि के 8 से। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनिएगा डगर विकास की, यह कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर आप सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम का विषय होगा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। संगीत सरिता, यह कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:30 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम अनुप्रसारित करेंगे रात्रि 8:45 पर। मन चाहे गीत, आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे से।

श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हिंदी में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय होगा सुबह के 6 बजे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना आप सुनिएगा प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ आप सुन सकेंगे प्रातः 6:30 पर। गायन स्वर होगा ए हरिहरन का। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 6:40 पर। सुबह 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह सुबह आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे से। कृषि संकेत आप सुनिएगा सुबह 7:05 पर, जिसका विषय होगा जैविक कीट नियंत्रण। विशेषज्ञ सर होगा डॉक्टर आशीष त्रिपाठी का। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 7:10 पर। सुबह 7:20 पर सुनिएगा मन चाहे गीत, संगीत सरिता आप सुन सकेंगे प्रातः 7:45 पर।

0: समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे सुबह 8 बजे से। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा प्रातः 8:15 पर। सुबह 8:30 पर सुनिएगा बिंदिया। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:50 से। फोन करें लोकगीत सुने, ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:05 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे सुबह 11 बजे से। प्रादेशिक समाचार होंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से दोपहर 2:10 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा दोपहर समाचार, समय होगा दोपहर के 2:15। इस घंटे की सुर्खियां आप सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 5 बजे से। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM band 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
3: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
2: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
3: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
2: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और PPE किट।
3: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
2: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
3: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
4: किधर है?
5: बेटे का नया अकाउंट और मेरा KYC अपडेट,
4: ये तो झटपट काम है।
5: कैसे?
4: अगर KYC डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
5: और बाकी चेंजेस?
4: घर बैठे वीडियो KYC या आधार OTP बेस्ड eKYC से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
5: RBI कहता है
3: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के युवाओं के नदी स्वच्छता प्रयासों की सराहना की। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकास कार्यों का किया शुभारंभ। विश्व पर्यटन दिवस पर इंदौर और मांडू में पर्यटकों का किया गया पारंपरिक स्वागत। और प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर सहित कई जिलों में आज रात बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 138वें संस्करण का आज प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के साथ ये कार्यक्रम सुना। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा नदी स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जन भागीदारी की मिसाल बताया। उन्होंने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मन की बात देशभर में हो रहे जन प्रयासों और सकारात्मक बदलावों को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल स्थित पंडित खुशीलाल शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के पहले शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद को केवल उपचार तक सीमित न रखते हुए स्वास्थ्य जागरूकता, रोग नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने महाकाल लोक थाने का लोकार्पण किया और महाकाल लोक से प्रधानमंत्री ई बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन में आगामी समय में एयरपोर्ट का भूमि पूजन और मेट्रो सुविधा भी उपलब्ध होगी। श्री यादव ने बताया कि ग्वालियर और जबलपुर को क्रमशः टेलीकॉम और औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी है।
1: आने वाले समय में ग्वालियर भी नई मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा और टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी नगरी के रूप में ग्वालियर बनने वाला है। इसी के समान रूप से जबलपुर के अंदर भी रोजगार परक एक पूरा मार्ग हम नया बनाने वाले, जो इंदौर भोपाल से होकर जबलपुर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जबलपुर भी औद्योगिक हब का हिस्सा बने। मेरी अपनी ओर से बधाई।
0: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत आज सड़क चौड़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने पैतृक मकान के प्रभावित हिस्से पर स्वयं कुदाल चलाकर काम की शुरुआत की। सड़क चौड़ीकरण से 272 भवन प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और इस वर्ष किसानों का धान भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने आज उज्जैन से शहडोल में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाकर हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने किसानों को उन्नत बीज, जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मछली और कुक्कुट पालन से जोड़कर आय बढ़ाने पर जोर दिया। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल और ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में पर्यटकों का पारंपरिक रूप से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पर्यटकों को अतुल्य भारत से संबंधित उपहार और प्रचार सामग्री भी प्रदान की गई। मांडू के जहाज महल परिसर में पर्यटकों को क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया गया। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाकर ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के प्रति किया गया।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का मिशन लाइफ आम जन को जीवन शैली में हो रहे दुष्प्रभावों के प्रति जागृत कर रहा है।
3: मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली का उद्देश्य धरतीवासियों को पर्यावरण के अनुकूल दैनिक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस अभियान पर अपने विचार व्यक्त किए थे। पर्यावरण को समर्पित इस अभियान के इंदौर जिले में क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए वन मंडल अधिकारी लाल सुधाकर सिंह ने बताया,
4: मिशन लाइफ भारत सरकार की एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की एक पहल है। इसी के अंतर्गत वन मंडल इंदौर में भी हमने मिशन लाइफ के अंतर्गत वृक्षारोपण का अपने क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाया और जुलाई माह में हमने लगभग 3 लाख पौधों का रोपण किया।
3: पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन समर्पित करने वाली पद्मश्री डॉक्टर श्रीमती जनक पल्टा मगिलीगन ने पर्यावरण को जीवन शैली में आत्मसात करने की बात कही।
5: मैं अपना जीवन पिछले 42 साल से इसी काम में ऐसा जी रही हूँ। आधा एकड़ जमीन, आधा एकड़ आसमान है उसके साथ मेरा, जिसमें मैं चारों तरफ जैविक बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के साथ जीती हूँ। मेरा जीवन, मेरा घर केमिकल मुक्त है, प्लास्टिक मुक्त है और पूरी तरह जीरो वेस्ट है और पूरी तरह जैविक है।
3: पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के भारत सरकार के इस अभियान मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की गतिविधियों की जानकारी के साथ मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर और शहडोल सहित कई जिलों में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, जबकि ग्वालियर, रीवा, सतना, छतरपुर और अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग ने लोगों से गरज चमक के दौरान खुले स्थानों पर न जाने की अपील की है। बात खेल की। क्रिकेट में आज तिरुवनंतपुरम में भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 12 ओवर में 74 विकेट के नुकसान पर 74 रन बना लिए थे। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा वनडे 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। एक दिवसीय श्रृंखला के बाद 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांदीपनि विद्यालय विनोबा रतनाम को फिक्की समर्थित राष्ट्रीय अराइज अवार्ड मिलने पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में हर रविवार को आयोजित होने वाली नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना में आज संतोष पांडे और साथी सागर द्वारा राय नृत्य की प्रस्तुति देंगे। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव में रोजाना जिले भर के हजारों लोग पहुंच रहे हैं। महोत्सव का समापन कल होगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले में प्रतियोगिताओं के साथ ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्कूटी वितरित की गई। खंडवा में पर्यूषण पर्व के समापन अवसर पर पोरवार दिगम्बर जैन समाज द्वारा क्षमावाणी महोत्सव श्रद्धा और आत्मशुद्धि के भाव के साथ मनाया गया। नर्मदापुरम जिले में अवैध शराब के खिलाफ बालागंज, मालाखेड़ी, गिरनी कंपाउंड, पिंचिंग घाट और भीलपुरा में कार्रवाई की गई, जिसमें 40 बल्क लीटर कच्ची शराब और 1.5 क्विंटल महुआ लाहन नष्ट किया गया। राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण नशा मुक्ति अभियान पर आधारित प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक रहा। और भवानपुर जिले में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सेवा, पोषण, सीखने और सहभागिता का संदेश दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन

0: के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
1: RBI कहता है जानकार बनिए,
0: सतर्क रहिए।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। सुना हुआ है कार्यक्रम ग्राम सभा का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को आप सबकी अपनी बहन राम कुमारी ठाकुर की राम राम पहुंचे। भैया आप सभी जनों के लाने ग्राम सभा के माध्यम से बहुत सारी चीजें जानकार और जागरूक करवे के लाने हम लेके आते हैं। तो अपन ये कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, आज विश्व पर्यटन दिवस है, संगे विश्व बधिर दिवस भी है। एक ही संगे देखो भैया बहनों जोन से अपनो बड़ो सरोकार है विश्व नदी दिवस, संगे विठल भाई पटेल की जयंती भी है। तो इन सभी पे अपन चर्चा करें, ओई के संगे किसानी की बात अपन करें और संगे एक बहुत ही अति उपयोगी भेंट वार्ता हम आपको सुनवा है, जी को विषय है भैया खरीफ फसलों से बीज उत्पादन एवं शुद्धता बनाए रखवे में सावधानी। तो अगर हम अपनो बीज बनावो चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखो चाहिए, तो बहुत ही उपयोगी वार्ता है, समय के हिसाब से सभी जने बड़े ध्यान से सुने। तो लियो सबसे पहले अपन बात करत है विठल भाई पटेल जी की जयंती के विषय में, कि इतिहास के पन्नों में नाम उनके लिखे जाते हैं, इतिहास के पन्नों में नाम उनके लिखे जाते हैं जो अपने जीवन में कर्तव्य परायणता के कछु लेख लिख जाते हैं। हाँ भैया, आज एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी महान विधिवेत्ता विठल भाई पटेल की जयंती है। वे स्वराज पार्टी के सह संस्थापक हते और लौह पुरुष माने जावे वारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया हते। वे अपने समय में विधायक भी रहे। उनने वो समय इंग्लैंड में जाके कानून की पढ़ाई करी और बैरिस्टर बने। बाद में अहमदाबाद की अदालत में वकालत भी करी। भी अपनी बाकपटुता और हास्य व्यंग की महारत हासिल होवे के कारण से बड़े लोकप्रिय हते। ऐसे महान क्रांतिकारी सेनानी विधिवेत्ता को जन्म गुजरात के नाडियाड में एक पाटीदार परिवार में 27 सितंबर को भवत हो। तो अपन सभी जने उनकी जयंती पे उनको सत सत नमन करत है। तो बहनों जातोहती चर्चा, ऐसे ही अगर काम अपने बीच के कछु लोग कर जाएं तो उनके नाम भी ऐसे ही इतिहास के पन्नों में लिखे जाए।
1: गुरुवार सुबह 10:55 पर सुनिए दीपक मेमोरियल एकेडमी मकरोनिया सागर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दीपक की ज्ञान ज्योत।
0: और भैया बहनों फिर आते हैं अपन अपनी दूसरी चर्चा पे, कि देखो किसान भैयारो आपनों के लाने हर प्रकार से जागरूक बनावो चाहते हैं, सो सभी प्रकार के दिन दिवस की जानकारी आपको देते हैं। पर्यटन के नाम से तो सभी जने परिचित हैं और बहुत ही भैया बहने हमारे घूम बे भी जात हैं। जैसे ही फसल आई और बिकी और कहूं ने कहूं घूम बे पर्यटन पे निकल जात हैं। तो आज भैया हरो विश्व पर्यटन दिवस है, जो दिवस 27 सितंबर को हर वर्ष मनाओ जात है और एक ही शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा 1980 में करी गई थी। 2026 के विश्व पर्यटन दिवस की आधिकारिक थीम जो है वह है पर्यटन को नवरूप देवे के लाने डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और ये थीम ये बात पे केंद्रित है कि कैसे डिजिटल तकनीकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्यटन के भविष्य में बेहतर बना रहे हैं, यात्राओं के अनुभवों को आसान कर रहे हैं और स्थायी विकास में मदद भी कर रहे हैं। तो ये दिवस को मनावे को भैया बहनों मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में जिम्मेदार टिकाऊ और सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देवो है। कैसे कि जब भी आप कहो पर्यटन पे जाओ तो आपको कोई भी प्रकार की असुविधा न होवे, आप परेशान न हो, इन सभी चीजों को बढ़ावा देवे के लाने विश्व पर्यटन दिवस मनाओ जात है। और अब बारी है मनोरंजन की, तो सुनते हैं अपन देवकी नंदन सकवार को।

0: अब सुन रही थी देवकी नंदन सकवार को, और अब सुने संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
5: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
4: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
5: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
4: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और PPE किट।
5: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
4: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
5: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में।
0: और भैया अब बारी है अगले दिवस की, और जो अगले दिवस क्रम है आज ये भैया विश्व बधिर दिवस। भैया आज विश्व बधिर दिवस है, और जो दिवस हर वर्ष सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इको मनावे को मुख्य उद्देश्य मूक बधिरों के प्रति सहानुभूति रखो चाहिए, उनको हर प्रकार से सहयोग करो चाहिए, उनके प्रति कोनो भी प्रकार को भेदभाव न रखें, और अगर जानकारी हो बे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के मशीनों को सहारो भी ले सकते हैं। अब ये देखो जैसे कोनो छोटो बाल बच्चो है, वो दो चार महीना में अपन को समझ में आते है कि एक सुनाई नहीं देवे, ऐसी कोनो प्रॉब्लम है, तो अपन को डॉक्टर को दिखा के मशीनों को सहारो या दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकते है, तो वो पे ध्यान दो चाहिए। और सरकार की तरफ से भी मूक बधिरों के लाने अनेकों प्रकार की सहायता चल रही है। इनके लाने स्कूलों की भी व्यवस्था करी गई है। ये दिवस पे अपन सभी जने संकल्प लेवे कि ऐसे जो भी सदस्य हैं उनको समाज में सम्मान देवे, उनको कोनो भी प्रकार से उपहास न करो जाए, उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करके आगे बढ़ावे और बढ़ावे को प्रयास करने हैं अपन सभी जनों के लाने। तो जातो होते ही चर्चा विश्व बधिर दिवस पे, और देखो अब बारी है अपनी भेंट वार्ता की, जो कि किसानों के लाने अति महत्वपूर्ण है। किसान भैयरो अपन देखत हैं कि अपन को बोनी के समय बीज जो है बहुत चौगनी कीमत पे या बहुत ही महंगो खरीदने पड़ते हैं। अगर अपन अपनो स्वयं को बीज खड़ी फसल के समय से ही तैयार कर लेवे, खेत को चयन करके

0: बीज के हिसाब की फसल तैयार करें तो अपनी लागत कम हो सकत है और किसानी से फायदा लौ जा सकत है। कैसे बीज में ही किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे जुड़ी भाई जा एक बहुत ही उम्दा भेंट वार्ता है। एक और विषय है खरीफ फसलों से बीज उत्पादन एवं शुद्धता बनाए रखने में सावधानियां। डॉक्टर ममता सिंह से बातचीत कर रहे हैं सतीश साहू। सुनते हैं पंजा उपयोगी भेंट वार्ता।
1: भैया हरों अपनी खेती किसानी के काम में बहुत से किसान भैया हरों को अपन देखत है कि बेघर को बीज अपनी फसलों के लाने इस्तेमाल करत हैं और करो भी चाहिए जा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लाने बहुत सी सावधानियां रखवे की आवश्यकता होत है। बहुत से ऐसे कदम उठावे की जरूरत होत है भैया जिनमें अपन जो बीज लगा रहे हैं वो भरपूर उत्पादन अपन को दे सके। तो यही विषय में जानकारी देवे के लाने आज उपस्थित है एक कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र से पधारी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ममता सिंह जी। तो डॉक्टर साहब आपको ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हम जो जानो चाहते हैं कि हमारे जो किसान भैया अपने घर को बीज इस्तेमाल अपनी खेती में करवो चाहते हैं तो खड़ी फसल में अब ऐसे कौन सी विधियां वे अपनावो शुरू कर सकते हैं, कौन सी सावधानी रखवो शुरू कर सकते हैं कि उनके लाने अच्छो बीज अपनी फसलों से प्राप्त हो सके।
2: बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसान भाई जैसे बीज खरीदते हैं, एक वर्ष उन्होंने बीज खरीदा तो उसको 3 वर्ष या 4 वर्ष तक वो किस तरह से अपना शुद्ध बनाए रखें कि उन्हें बार बार बीज जो खरीदने की समस्या होती है उससे उन्हें निजात मिल जाती है और अनावश्यक रूप से जो पैसे की बर्बादी होती है या समय की बर्बादी होती है या मानसिक हमें तनाव होता है कि हम बीज कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, वो हमें उत्पादन अच्छा देगी या नहीं, इस सबसे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो जब भी हम बीज खरीदने जाते हैं या हमने पुराने 1-2 वर्ष पहले बीज खरीदा है तो अब इस वक्त है कि हमारे खेत में फसल खड़ी हुई है
1: जी।
2: तो हम पहले इस बात पे चर्चा करें कि हम इन फसल को हम कैसे अगले वर्ष के लिए बीज के लिए हम सुरक्षित और शुद्ध बना सकें।
1: बिल्कुल।
2: तो किसान भाइयों, आप खेत में जाते हैं रोज ही 1-2 चक्कर आप खेत में जाते हैं कि देखते हैं हमारी फसल में कीड़े तो नहीं लगे हैं या कचरा तो नहीं लगा या कोई जानवर तो नहीं घुस गया है। तो जब आप ऐसे समय में खेत में जाते हैं तो एक बार मेड़ के किनारे चारों तरफ खड़े होकर ये देखिए कि जो हमने किस्म लगा रखी है, जैसे अभी हम सोयाबीन की बात करें कि हमने जवाहर सोयाबीन 335 लगा रखी है, जवाहर सोयाबीन 93.05 लगा रखी है
1: जी।
2: जवाहर सोयाबीन 95.60 लगा रखा है। तो हम किसान भाई उनकी पूरी संरचना किस तरह का पौधा है, उसमें किस तरह की फलियां आती हैं, ये हर किसान जानता है
1: जी।
2: तो हम ये देखें कि हमने अगर 335 लगा रखी है तो हमें उसमें कोई 93.05 का पौधा तो नहीं नजर आ रहा है, उसको ध्यान से देखना पड़ता है। अगर हम ऐसे कई बार देखेंगे तो हमें इक्का दुक्का पौधे या हो सकता है 10-20 पौधे इस तरह के हमें नजर आ जाते हैं। तो हमें ये उनको अलग कर देना है। हम पूरे मान लीजिए हमने 4-6 एकड़ खेत में फसल बोई है तो हम 4-6 एकड़ के लिए इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो हम इतना कोशिश करें कि हम 1 एकड़ खेत के लिए अपनी फसल को शुद्ध बना लें और उस 1 एकड़ की फसल से जो हमें पैदावार मिलेगी वो हमें अगले वर्ष के लिए बहुत हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उससे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस तरह सोयाबीन 93.05 है तो उसके पौधे अलग कर दें, या 335 हमारा 93.05 में लगा है तो उनकी पत्तियों का आकार एकदम गोलाई लिए हुए होता है, हर किसान पहचानता है, वो उसको निकाल सकते हैं। या फिर हमें कभी कभी फलियों के आकार में भी उनकी, जैसे किसी में 2 बीज होते हैं, किसी में 3 बीज होते हैं, या किसी फली के ऊपर रोए पाए जाते हैं, किसी में नहीं होते हैं, ये सब किसान बखूबी पहचानता है
1: जी जी।
2: और वो देख करके, अब चूंकि फूल आने की जो समय था वो खत्म हो चुका है, फलियां बन गई, नहीं तो फूल जब आते हैं तो भी हमें बहुत आसानी से हम इन तरह के पौधों को पहचान सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ नई किस्में आई हैं, कुछ पुरानी हैं, किसी में बैंगनी रंग के फूल होते हैं, किसी में सफेद रंग के फूल होते हैं, किसी पौधे की ऊंचाई अधिक होती है। तो ये जब किसान बार बार खेत में जाता है तो उसको ये पौधे बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं और उनको बिना लालच किए उसको बीज के लिए कम से कम 1 एकड़ के लिए उस फसल को शुद्ध बनाना है
1: जी।
2: निकाल करके बिल्कुल हम अलग कर दें। इसी तरह रोगग्रस्त पौधे जो हमारे लगे हुए हैं, जैसे इस समय पीला मोज़ेक रोग बहुत फैला हुआ है, चाहे वो उड़द की फसल हो, मूंग की फसल हो या सोयाबीन की, तो हमें इन पौधों को भी निकाल देना है, क्योंकि जब हम एक दो पौधे निकालते रहेंगे तो हमारी फसल में एक तो बीमारी नहीं फैलेगी और हमारे पौधे किस्म की जो आनुवांशिक शुद्धता बनी रहेगी। ऐसा इसलिए भी हम

0: करते हैं, क्योंकि हर किस्म की पैदावार अलग अलग होती है। तो हम किसान की समस्या रहती है, आज हमें पैदावार 25 कुंटल मिल रही है, 20 कुंटल मिल रही है, अगले वर्ष उसका उत्पादन घट गया है। तो जब ये किस्म हमारी अशुद्ध होती जाती है तो वो हमारा उत्पादन घटता जाता है। लेकिन अगर हम फसलों की किस्मों को शुद्ध बनाए रखेंगे तो हमारी पैदावार बनी रहेगी और हमें बीज खरीदने के लिए बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो पैसे की हमारी बचत हो जाएगी, समय पे बीज उपलब्ध हो गया, समय पे हम बुआई अगले वर्ष कर सकते हैं। तो पहला तो हमें जो सावधानी रखनी है वो ये हो गई
1: जी।
0: दूसरी सावधानी अब हमें कटाई के समय देखनी है कि हमने जब किस्म काटी है तो हम उसको खेत से अपने जहां पे भी हमारा खलिहान है या जहां हमने थ्रेशर लगा रखा है वहां तक हम उसको अलग साफ ट्रॉली में लेकर के जाएं, जिससे कि हमारा बीज मिक्सर ना हो। पता चला हमने उसी ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले कोई किस्म की ढुलाई की है, फिर दूसरे किसान ने काटा और बिना उसकी ट्रॉली की सफाई किए वो अपने खलिहान तक ले गया। तो अगर 2, 4, 6, 10 पौधे भी हमारे मिक्सर हो गए तो वो अगले साल के लिए हमारे बीज को अशुद्ध बना देते हैं
1: और आगे चल के और बीज
0: एक पौधे से हमारी जितनी फलियां बनी उतने दाने उसमें बने, फिर वो हमारी धीरे धीरे फसल अशुद्ध हो जाती है और उसकी पैदावार में कमी आती है
1: जी।
0: फिर किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जैसे हमने रख भी दिया लेकिन उसको पास पास ही ले तो गए हम अलग से, लेकिन हमने जो गट्ठर बना के रखे या हमने जो खेत से कटाई करके हम फसल लेके आए उसको आस पास रख देते हैं। दाने जैसे ही धूप लगती है हमारी चटकने लगते हैं और वो उछल उछल के दूर दूर तक जाते हैं। तो हम इतनी दूरी बना करके अपने खलिहान में उस किस्म को रखें जिसका हमें बीज बनाना है कि इस तरह के मिक्सर खलिहान में भी ना हो,
1: अनाज में और बीज में मतलब जो है मिलाव ना हो पाए।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: फिर थ्रेशर की सफाई कोई किसान नहीं करता। जैसे हमें सबसे ज्यादा बीज हमारा मिक्स होता है थ्रेशर से, थ्रेशर में हमारा 4-6 किलो तो बीज फंसा ही रहता है। तो हम ये कोशिश करें कि अगर हमने जिस किस्म का बीज हम बना रहे हैं, चाहे वो 95-60 हो, 93-05 हो या 335 हो, तो हम उसके पहले एक दो बंडल हम उसमें थ्रेशिंग कर लें जिसको हमें बीज के लिए नहीं रखना है। मान लीजिए हम 335 के बीज निकाल रहे हैं, उसको थ्रेशर करना है, तो हम उसके एक दो बंडल जो हमने उसमें डाले और जो पहला हमारा एक दो बोरी बीज निकला उसको हम बीज के लिए ना रखें
1: जी,
0: क्योंकि उसमें पुराने जो थ्रेशर से बीज निकाले गए होंगे उसके बीज रखे होंगे। तो हम इस तरह से उसको अलग कर दें
1: जी।
0: फिर अब बीज को हम अच्छे से साफ बोरों में सुखा करके, जिसमें कीड़े, जैसे पुराने बोरे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है पुरानी जो भी हमने बीज रखा होगा उसके कीड़े या उनके अंडे या घुन जो भी हैं वो उसमें मौजूद रहते हैं। तो हम उनको दवा से उपचारित कर लें या अच्छी तरह धो करके धूप में सुखा लें, फिर हम उस किस्म का बीज और रखें और ऊपर से उस पर लिख दें कि हाँ हमने ये फला किस्म का बीज अगले वर्ष बोने के लिए रखा है,
1: पहचान के लिए।
0: पहचान के लिए, तो आपका बीज मिक्स नहीं होगा। और इस तरह की शुद्धता बनाए रखेंगे तो 2-3 वर्ष तक हमें बीज खरीदने के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा
1: जी। अच्छा, जो आपने बारदाने की बात बताई, बोरियों की बात बताई, तो पुरानी बोरी अगर संभव हो सके तो पुरानी बोरी न इस्तेमाल करें, नई बोरियों में अगर भंडारित करें तो ज्यादा अच्छी।
0: किसान भाइयों के पास अगर पुरानी बोरियां हैं, नई बोरियां नहीं मिल रही हैं, तो हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन बोरियों को हम अच्छी तरह पहले हमें धो के सुखाना है, या फिर हम उनको पानी में थोड़ा सा उबलते पानी में थोड़ी देर डुबा कर रख दें, उसके बाद हम उसको सुखा करके रखें। या फिर हम जैसे एक भाग मेलाथियन ले लें और 100 भाग पानी ले लें, उसमें घोल बना करके उसमें थोड़ी देर हम अपनी पुरानी बोरियों को डुबा करके रख दें और फिर उसको खूब अच्छी धूप में सुखा लें। पर्याप्त जब वो बोरियां सूख जाएंगी, नमी बिल्कुल उसमें नहीं रहेगी, तब हम सूखा बीज उसमें हम भंडारित करके रख सकते हैं। बीच बीच में लेकिन हमें उसकी देखभाल करनी पड़ेगी जहाँ पे हम बीज का अपना भंडारण कर रहे हैं, कि क्या उसमें नमी तो नहीं आ रही है या चूहों से नहीं परेशान हो रहे हैं या कोई और। तो उसमें हम इसी घोल को बना करके ऊपर से बीज के लिए जो हम रख रहे हैं खासकर, उसमें हम ये जो हमने बताया घोल उसको हम ऊपर से भी छिड़क करके बोरियों को सुरक्षित कर सकते हैं
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे वर्तमान में सोयाबीन के संदर्भ में अपनी बात चल रही है बीज की
0: जी,
1: तो भंडारित करत समय उसमें कितने प्रतिशत बीज में नमी रहना चाहिए?
0: देखिए, सोयाबीन का है, अगर हम रख रहे हैं तो हमारी दलहनी फसलों में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं
1: जी,
0: तो हम उसको 8-10% जैसे अब किसान के पास तो नमी नापने का कोई साधन नहीं है
1: जी, जी, जी।
0: तो वो धूप में उसको सुखा ले और दांत के नीचे दबा करके देखे, जब वो कट की आवाज के साथ दाने हमारे वो होते हैं
1: जी,
0: तो समझिए हमें भंडारण करने के लिए उचित नमी उसमें मौजूद है, उसके बाद ही हम उसको भंडारित करें
1: जी।
0: दाना अगर जरा सा भी उसमें नमी

0: ज़्यादा रही तो वो हमारी बीमारियाँ लगने का डर रहता है, उसमें फफूंद लग जाती है या और कीड़े लग जाते हैं, वो हमारी बीजों को खराब कर सकते हैं
1: जी। तो भैया देखो, यदि इन विशेषज्ञों के बताए अनुसार हम जब खेत में हमारी फसल लगी रहे थे वो समय से लेके और अंत में भंडारण तक की स्थिति में अगर हम ये सावधानियाँ रखें तो निश्चित रूप से हमें घर ही को ऐसा बीज मिले कि उसे हम अच्छे से अच्छो उत्पादन ले सकते हैं। वो सिर्फ एक बार नहीं भैया, जैसो कि मैडम ने बताई, अपन अगले 2-3 साल तक उनको इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे श्रोताओं को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, ये लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो भैया, अब सुन रहे थे अपन इतनी उम्दा भेंट वार्ता, खरीफ फसलों में बीज उत्पादन एवं शुद्धता बनाए रखने में सावधानियां। विशेषज्ञ थी डॉक्टर ममता सिंह, बतकाव कर रही थी हमारे सतीश साहू। और अब बारी है एक देवी गीत की, गा रहे हैं बद्री प्रसाद खरे।

0: हाँ ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: अबे अपन ने सुनो जो देवी गीत और इन्हीं सब चीजों के संग है। देखो भैया, खेती किसानी को काम तो लगो ही रहते हैं। अबे सभी किसान भैया ने देख रहे हैं कि पानी ज्यादा गिरवे से अपनी फसलें कटवे की हो गई है, मगर नहीं काट पा रहे, नहीं देख पा रहे, खेतों में भी नहीं घुस पा रहे। मनो भैया तनक गम खाओ, पानी रुकवे वारो है और आप औरों की लाने समय जरूर मिल है कि अपनी फसलें काट सको। थोड़ा बहुत नुकसान हो सकत है ज्यादा पानी की वजह से, मनो ऐसो देखने में नहीं आ रहा है, फसलें अच्छी हैं। और भैया देखो, अबे एक और बात है कि अपन और जो है किसानी में काम तो कर रहे हैं, मनो ठीक से देख नहीं रहे। फसलें आ गई हैं तो उनको देखने हैं, उनकी निगरानी करने हैं, उनके लाने आपको आगामी का व्यवस्थाएं करने हैं, बेबी करके रखने हैं, कौन कौन से अपने जो कृषि यंत्र हैं उनकी भी देखभाल करके तैयार कर लेवे कि उनकी जरूरत अपन को जैसे ही पानी खुलत है और फसल सूखत है अपन लेके आते हैं और तुरंत दूसरे काम लग जाते हैं। मल्चर है, बखन्नी है, आगामी जो बोनी है रवि की ओकी भी तैयारी अपन को करके रखने हैं। तो ये सभी व्यवस्थाएं आप औरों के लाने करने कहाई। और एक ही बात अपन सुने थे, एक और चेतावनी चंद्रभूषण पाठक की गाई भाई।
1: भाई बंधु और कुटुंब कबीला, बहु बेटा नाती, ओ पलका गेरे सब रही बैठे,

और भैया बहनों देखो, आज तो कहा है दिन दिवसों की झड़ी लगी है, अगलो क्रम है विश्व नदी दिवस को। तो आज सभी जने जानत समझत है और देखत है कि भारत में और विश्व में जितनी नदियां हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम और आप स्वयं नदियों के किनारे जब भी जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो उतनी आसपास अस्वच्छता फैलाते हैं। नदियों और उनके जल आसपास के स्थान को गंदो कर देते हैं। ऐसो करवे से नदियों के किनारे को सौंदर्य, जल और जल को स्तर प्रभावित होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखत भय नदियों के महत्व, उनके प्रति जागरूकता बढ़ावे के लाने, नदियों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करवे के उद्देश्य को लेके ये दिवस की शुरुआत 2005 में कनाडा के संरक्षणवादी मार्क एंजेलो के द्वारा करी गई थी। भैयरो अपन जानत है कि नदियां मानव जीवन, कृषि, प्रकृति की जीवन रेखा और ताजे जल को प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे सभी जने आज संकल्प लें कि कबों नदियों को गंदो अस्वच्छ न करें। विश्व नदी दिवस सितंबर के चौथे रविवार को यही उद्देश्य को लेके मनाओ जाते, तो संकल्प लेवे कि नदियां स्वच्छ रखें और स्वच्छता फैलें। और अब बारी है मंडी की भाव की। तो भैयरो मंडी के भाव पुराने हैं। गेहूं 2575 से 3355 रुपया, चना 6305 से 6455 रुपया, मसूर 5800 से 8605 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन 5600 से 5805 रुपया, उड़द 3500 से 6305 रुपया, मक्का 1930 से 1930 रुपया और सरसों रव है 6775 से 7005 रुपया। और भाई बहनों मौसम की अगर बात करें तो बादल छाए हैं, तापमान अधिकतम रहो 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहो 22 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 80% रही। और बहनों हम तो जाई के हैं भैया बहनों के अपने नदियों जलाशयों को स्वच्छ रखें, पर्यटन के स्थलों को भी स्वच्छ रखें और अपने आसपास जो मूक बधिर व्यक्ति हैं उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति रखें। और आप सभी जने हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश रहें। इन्हीं दुआओं शुभकामनाओं के संगे अपनी बहन रामकुमारी को आज्ञा देव। राम राम।

0: तो अभी आप सुन रहे थे ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना है आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

अब बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

विश्व आत्मा। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर था साधना सरगम का। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत था वीजू शाह का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

श्रीदेव। इस फिल्म से यह गीत अभी आपने सुना। आवाजें थीं अमित कुमार और सपना मुखर्जी की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। अगला कार्यक्रम सुनिएगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: विकास की। सभी श्रोता मित्रों को रजनीश शर्मा का नमस्कार। स्वागत है आप सभी श्रोता दोस्तों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास की राह सिर्फ सड़कों, इमारतों और तकनीक से होकर ही नहीं गुजरती, बल्कि एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ भविष्य भी विकास की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। आज के इस कार्यक्रम डगर विकास की में हम एक ऐसी ही अनुवांशिक रक्त संबंधी बीमारी सिकल सेल एनीमिया पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके प्रति जागरूकता, समय पर जाँच और उचित स्वास्थ्य देखभाल बेहद महत्वपूर्ण है। सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार के लिए बीमारी को समझना, समय पर इसकी पहचान करना और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार नियमित देखभाल बहुत जरूरी है। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के माध्यम से जागरूकता, स्क्रीनिंग, उपचार और परामर्श को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया की पहचान, इसके लक्षणों, इसके उपचार और इसके उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हमें जानकारी दी सहायक नोडल अधिकारी सिकल सेल उन्मूलन डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव ने।
1: सिकल सेल एनीमिया जो रहता है, हमारे एनीमिया शब्द को अगर हम समझे तो खून की कमी होना, और सिकल सेल का मतलब होता है कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन मतलब पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। ये जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, ये गोल या अंडाकार या गोल शेप की हो सकती हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये गोल ना होकर हसिया या सिकल शेप हो जाती है, तो जिसके कारण ये बहुत कठोर हो जाती हैं, और उसके कारण वो जब हमारे कोशिकाएं हैं और उसमें जब आना जाना करती हैं तो उसमें कई बार जो कोशिकाएं हैं या फिर जो हमारी नस है उसमें फंस जाती हैं और रक्त के प्रभाव को रोक देती हैं। प्रायः एनीमिया जो हम समझते हैं, जो आमजन में अक्सर देखा जाता है भारतवर्ष में, तो जो कि आयरन की कमी से होता है, जबकि इसमें आयरन की कमी नहीं है, जो कोशिकाएं ऑक्सीजन को लाना ले जाना कर रही हैं उनकी इस बनावट है उसमें डिफेक्ट होने के कारण हो जाता है। ये अनुवांशिक है, जिसे को जेनेटिक बोलते हैं, तो यह किसी भी तरीके खान पान से नहीं होता है, बल्कि बच्चों में माता पिता के उपलब्ध जीन के अनुसार ये उसमें वंशानुगत बीमारी होती है। ये दो तरीके से होता है ये बीमारी, एक होता है सिकल सेल ट्रेट, जिसको कि हम सिकल सेल वाहक भी बोलेंगे, और दूसरा होता है सिकल सेल डिसीज। जो लोग सिकल सेल रोग या सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल डिसीज, जिसको भी हम कॉमनली बोला जाता है, दोनों ही जीन जो रहते हैं वो दोनों ही अगर प्रभावित हो जाए, जन्म से ही ये बीमारी होने लगती है। जबकि जिन लोगों को सिकल सेल ट्रेट होता है, कई बार बहुत उम्र होने के बाद भी ये पता चल पाता है, कुछ लोगों में शायद 14-15 साल मालूम हो या 20-22 में, या अक्सर 30-40 की उम्र तक भी मालूम हो पाता है कि यह बीमारी उनको हो रही है। जिन लोगों को, बच्चों को पहले जन्म से के बाद से होने लगता है, जिसको कि हम सिकल सेल डिसीज कहेंगे, तो जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द या सीने में दर्द, खून की कमी लगातार होते रहना, सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बच्चों में ग्रोथ जिसको बोलते हैं कि उनकी हाइट बढ़ना, वो चीज बार बार बीमार होने के कारण नहीं हो पाती है। पीलिया के लक्षण आने लगते हैं, तो इस तरह के लक्षण बच्चों में प्रायः देखे जाते हैं, जो कि अक्सर जन्म के बाद से ही 1 साल से ही दिखाई देने लगते। इसमें जांच जो होती है, सामान्य खून की जांच होता है, इससे यह पता नहीं चल पाता है कि यह इस व्यक्ति को सिकल सेल की बीमारी है। इसके लिए दो तरह से होते हैं, जिसको कि हमारे सॉल्युबिलिटी टेस्ट या रैपिड स्क्रीनिंग बोला जाता है, तो इससे मालूम चल जाता है कि सिकल सेल की बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये किस तरह का है, वाहक है कि रोगी है, ये हमारे विशेष पुष्टि जांच जिसको बोलते हैं HPLC, इसके माध्यम से 100% ये क्लियर हो जाता है। मध्य प्रदेश में यह एक राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यह सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य शिविरों में इस तरह की जो जांचें होती हैं, ये मुफ्त रहती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि छिंदवाड़ा एक जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2023 से सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम चालू किया गया हुआ था, तो इसको पहले ही फेज में छिंदवाड़ा को भी इसमें शामिल किया गया हुआ था, इसलिए सबसे प्रभावी तरीका जो है जागरूकता और जेनेटिक काउंसलिंग है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिकल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड दिया जा रहा है, यदि लड़की और लड़का दोनों में ही सिकल सेल डिसीज वाले लक्षण है, तो इस तरह की शादियों को हम लोग डिस्करेज करते हैं या मना करते हैं कि इस तरह की शादी होने पे जो बच्चे हैं उनको होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इस तरह से हमें काउंसलिंग की जाती है। ये काउंसलिंग का जो कार्य है, जो ग्रामीण स्तर पे पदस्थ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ANM और आशा के द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ जन जागरूकता के अलग अलग जो कार्यक्रम होते रहते हैं, स्वास्थ्य शिविर होते हैं, उनमें भी इस तरीके का किया जा सकता है कि यदि ये हमारे पास कार्ड है तो क्या हमें शादी कराना उचित रहेगा, तो ये बिल्कुल आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या ANM आशा के माध्यम से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। इसमें जो छिंदवाड़ा में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पर लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश जो है विगत वर्ष जो सिकल सेल कार्यक्रम रक्त विशेष कार्यक्रम हुआ था तो उसमें छिंदवाड़ा जिले को प्रथम पुरस्कार भी मिला हुआ था कि जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में हमने कार्य किया हुआ है गर्भावस्था में जांच के लिए और सबसे अधिक लोगों तक कार्ड पहुंचाने वाला कार्यक्रम रहा हो चाहे उन लोगों की काउंसलिंग करने वाला कार्ड है। तो इसमें मध्य प्रदेश को काफी प्रमुख 3 शहरों में इसका छिंदवाड़ा का नाम माना गया हुआ कि 2 स्थिति हैं सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल कैरियर। जिन लोगों को सिकल सेल ट्रेट रहता है या वाहक रहते हैं उनके लिए बहुत आसान रहता है, सिर्फ बहुत ही छोटी एक फॉलिक एसिड की गोली रहती है, एक गोली प्रतिदिन खाना रहता है तो उससे व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। जिन लोगों को डिसीज वाली स्थिति है उन्हें 2 अलग टैबलेट मतलब फॉलिक एसिड के साथ में एक हाइड्रोक्सी यूरिया की भी टैबलेट दी जाती है। उन्हें अक्सर साल में 1 या 2 बार आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त चढ़ाने की भी जरूरत हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ऐसे लोगों के लिए निमोनिया के प्रिवेंशन के लिए भी 2 अलग अलग वैक्सीन जो कि समयांतर लगाए जाते हैं उसकी भी व्यवस्था लगातार की जा रही है। तो इसमें घबराने वाली चीज नहीं है बट ये है कि अगर हम इसके सतत अपना टेस्ट कराते रहें तो इसके माध्यम से हम चाहे वो कैरियर हो चाहे डिसीज हो वो एक सामान्य जीवन शैली है वो जी सकता है, डॉक्टरों से चार विमर्श भी ले सकते हैं।
0: सिकल सेल के प्रबंधन में मरीज और परिवार की जागरूकता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है सही स्वास्थ्य सेवाओं तक समय पर पहुंच। इस दिशा में स्क्रीनिंग परामर्श और समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ में आयुष चिकित्सा पद्धतियां किस तरह अपनी भूमिका निभा सकती हैं। इस पर हमें जानकारी दे रही हैं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर प्रमिला यावकर।
2: राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य है कि जो आयुष विंग होम्योपैथी औषधालय चिकित्सालय है यहाँ पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 2023 में एक आह्वान किया गया था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सिकल सेल उन्मूलन है उसके अंतर्गत सिकल सेल रोग भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में लेकर उसे समाप्त करना है और उनका दूसरा उद्देश्य था कि जेनेटिक जो ट्रांसमिशन को समाप्त करना है। 2047 में जब हमारा जो अमृतकाल मनाया जाएगा तब तक हमारा भारत देश सिकल सेल मुक्त हो सके। अभी अभी यहाँ जिले में HPLC जो टेस्ट हो रहे हैं जिला चिकित्सालय में उसके माध्यम से हमें पेशेंट जो है पॉजिटिव केसेस में आ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को एड ऑन थेरेपी के रूप में आयुष विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि आयुष विभाग से आयुर्वेदिक है होम्योपैथी यूनानी इन तीनों मेडिसिन के थ्रू इनको उपचार किया जा रहा है। जैसे कि अभी चिकित्सालय में अपने यहाँ पे IPD है, IPD में पेशेंट एडमिट है तो ऐसे पेशेंट को हमारी OPD भी वहाँ पर है तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं कि IPD में एक राउंड लेकर ऐसे पेशेंटों को चिन्हांकित कर लेते हैं और उन लोगों को मेडिसिन देना उन्हीं के पास जाकर या फिर डोर टू डोर जाके मेडिसिन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में आयुष विंग है जिसमें सिकल सेल यूनिट का निर्माण किया गया है, सभी जो ब्लॉक है वहाँ का डाटा संधारित कर रहे हैं, सभी ब्लॉक में जो जो पेशेंट है उन लोगों का फॉलोअप लिया जा रहा है, उन लोगों को डोर टू डोर मेडिसिन भी दी जा रही है और ब्लॉक के नोडल जो है अपने अंडर में जितने सिकल सेल पेशेंट है उन लोगों को मेडिसिन डोर टू डोर जाकर दे रहे हैं। इसके पहले जो पेशेंट आते थे उनको काफी प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि उनको लॉस ऑफ हेपेटाइटिस की कंप्लेंट मिलती थी, पेन होता था, बार बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता था उसमें हमें काफी आश्चर्यजनक परिवर्तन मिले हैं। पेशेंट इस वजह से आयुर्वेदिक या एड ऑन थेरेपी लेने के लिए काफी उत्साहित दिख रहा है। कई पेशेंट ऐसे है कि जिनको क्राइसिस होता था तो वो उसमें कमी आई है, जो एड ऑन थेरेपी के साथ में आयुर्वेदिक या होम्योपैथी मेडिसिन ले रहा है तो उनकी ये प्रॉब्लम सबसाइड हो रही है। दूसरा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब उनको 15-15 दिनों में चढ़ता था या फिर 1 महीने में चढ़ा जाता था तो उसमें काफी अच्छे बेनिफिट मिले हैं। आयुष विभाग की प्रतिनिधि होने के रूप में एक ही संदेश है कि आप एड ऑन थेरेपी के रूप में जो अभी प्रोग्राम चला जा रहा है इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी एड ऑन थेरेपी के रूप में लेना स्टार्ट करें।
0: सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के लक्ष्य को हम हासिल कर सकें इसके लिए जरूरी है जागरूकता और सही समय पर उपचार। आयुष विभाग द्वारा सिकल सेल उन्मूलन 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में हमें जानकारी दी जिला नोडल सिकल सेल एड ऑन अधिकारी डॉक्टर नीरज विश्वकर्मा ने।
3: सिकल सेल उन्मूलन जैसा कि सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसमें जागरूकता के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह पहली चीज तो कैंप लगा रहे हैं, दूसरा इसी मटेरियल के जरिए हम लोगों को ये पहुंचा रहे हैं। जल्दी हम इससे संबंधित एक अपना सोशल मीडिया पे भी कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, आगामी दिनों में उसकी तैयारी चल रही है कि सिकल सेल की रोकथाम कैसे की जा सकती है। पॉम्पलेट्स के जरिए, फ्लेक्स बैनर के जरिए हम लोगों तक ये चीजें पहुंचा रहे हैं। आयुष विभाग द्वारा एक उपचार के लिए पूरी एक गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन के अनुसार सभी जितने आयुष औषधालय हैं उन औषधालयों में ये औषधियां उपलब्ध हैं। तो इसमें मुख्य तौर पर आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा पे ज्यादा उन्होंने दवाइयां दी हैं और SOP के अनुसार इसमें हमारे पास च्यवनप्राश अवलेह उपलब्ध है, द्राक्षावलेह उपलब्ध है, फिर जोड़ों में दर्द के लिए रासना सप्तक कषाय और ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और ये सभी औषधियां सभी औषधालयों में उपलब्ध हैं। पिछले एक वर्षों में लगातार इन औषधियों को मरीजों तक पहुंचा रहे हैं, प्लस साथ में कुछ जो रसायन औषधियां दे रहे हैं तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है। पहले पेशेंट को एक महीने में ब्लड लगता था, अब 2 से 3 महीने में ब्लड लग रहा है। तो मैं तो रोगियों से यही कहना चाहूंगा कि जो दवाइयां चल रही हैं उसके साथ में आप आयुष की दवाइयां लें, रोग में काफी अच्छा परिणाम मिलेंगे।
0: राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 का व्यापक उद्देश्य सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अधिक से अधिक लोगों तक स्क्रीनिंग और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और प्रभावित लोगों को उचित देखभाल और परामर्श उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करना है। इस अभियान की सफलता केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से भी जुड़ी है। समय पर जांच कराना और सही जानकारी प्राप्त कर चिकित्सकीय सलाह का पालन कर बीमारी से जुड़े भ्रम और गलत धारणाओं को दूर करना, ये छोटे छोटे कदम एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सही जानकारी ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है और समय पर जांच स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन 2047 के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हों। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर था रजनीश शर्मा का, संपादन अनिल सनोडिया का था, प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की और संयोजन था अल्पना गोलेंद्र का।

0: आप सुने थे कार्यक्रम डगर विकास की। योगदान था आकाशवाणी छिंदवाड़ा का। इस कार्यक्रम में विषय था राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम डगर विकास की। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है संगीत सरिता।

0: रेखा भारद्वाज के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, बोल लिखे थे गुलजार ने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: बढ़ेगा आपका व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43 22 97। आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: और अब सुनिए कार्यक्रम में ये गीत।

रमन स्वामी के स्वर में यह गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने वुमेन्स लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथलॉन, वुमेन्स स्टीपलचेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मिढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय

0: नवंबर 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा चिन्हित जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग। 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, a machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
4: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
5: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
4: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
6: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पिक टाइम मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के।
4: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.up.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
7: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैंपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंपेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला फरमाइशी गीत।

इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, आवाज थी आमिर जमाल की। गीत लिखा था सईद कादरी ने, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। फरमाइश थी आप सभी की। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरव और आपके सभी साथी, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष और आपके सभी साथी, नरियल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला विशाल और आपके परिवार के सभी सदस्य, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घाटे, संगीता साक्षी जयश्री महित्री, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीवी कुलथे, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र और आपके परिवार के सभी सदस्य, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी गीत।

रिफ्यूजी। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी उदित नारायण और साथियों की। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था अनु मलिक का। फरमाइश थी आप सभी की, अनारकली बाजार पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और आपके सभी साथी। गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल और आपके सभी साथी। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी और आपके परिवार के सभी सदस्य। सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहां, तलत जहां, फरहत, मुजहत, साजिया और नाजिया। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ और आपके सभी साथी। रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका, बुग्गू। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा और आपके सभी साथी। और अब सुनिए कार्यक्रम में ये फरमाइशी नगमा।

राज द मिस्ट्री। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, आवाज थी कृष्णा की, गीत लिखा था कुमार ने, संगीत था राजू सिंह का। पसंदगी थी आप सभी की। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलेरकर, रतन माला और आपके साथी। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता, सोनू मोनू रानू, सपना, शिवी, सलोनी और आपके परिवार के सभी सदस्य। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। सरधाना मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जीव्यम और आपके परिवार के सभी सदस्य। भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, चीनू, आसमा, दीपक और अनुश्री।

यवतमाल महाराष्ट्र से सुनने वाले राहुल, मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी और आपके सभी साथी, और अब सुनिए कार्यक्रम में यह अगला और अंतिम फरमाइशी गीत।

MBBS इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और विनोद राठौर की। गीत लिखा था राहत इंदौरी ने, संगीत था अनु मलिक का। फरमाइश थी आप सभी की। सतना से उमंग मलिक, आकांक्षा माही। राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार और आपके सभी साथी। हरियाणा से जसविंदर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और कमरजीत कौर। समावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार, सुदामा, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी देर में सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: शायर।
1: आप सोच रहे होंगे नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं।

0: मामला क्या है आज के फनकार कार्यक्रम में? आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यशराज चोपड़ा को।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

0: हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।
1: यशराज चोपड़ा 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यशराज चोपड़ा ने अपनी सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही यह समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेल्यूलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का, और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में।

यश चोपड़ा, जाने माने कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आप आईएस जौहर के नाम से जानते हैं, उनके असिस्टेंट रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई के सानिध्य में उन्होंने सीखा सिनेमा रचने का गुर। सन 1959 आ गया और यश चोपड़ा को मिली उनकी पहली फिल्म धूल का फूल। इसे यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और लीला चिटनीस के अभिनय वाली इस फिल्म का बड़ी सूझबूझ से निर्देशन किया यश चोपड़ा ने।

0: बनेगा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, बीआर चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस बीआर फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई ना कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्म।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब बीआर फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमुश्शान फिल्म, जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म थी वक्त।

अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और शानदार डायरेक्शन के लिए फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई दो बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान।

को बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी। ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ एक महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन बीआर फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना के अभिनय वाली यह फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई।

0: फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजत पट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी, यश चोपड़ा की निर्देशित, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार।
1: लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
2: जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई।
1: रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ।
2: नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
1: उफ, तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंथ कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। रवि, जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
2: मेरे पास मां है।
0: दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के 2 साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला।
3: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: चलते।
1: एक के बाद एक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रहीं, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली ये फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार

0: इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड्स जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर जारा। सारी दुनिया में वीर जारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम था जब तक है जान, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जहां एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया।
1: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।
0: और इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: बेस आईजी नगोया
2: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जद्दोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वॉश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजिन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक, लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर

0: हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खजूर पांचवें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरिपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। तीन पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिदाज भी।
1: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। परवीन ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अत्थापुंग सिंगथेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला आरएससी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का तीसरा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने तीन और पदक पक्के किए, अंकुश, परवीन, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरे।
0: Much like this, two medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they feature in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Ian Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same fate against a Malaysian opponent. Both these players missed out on not just the gold medal, but also on a direct qualification to the LA 2028 Olympics. However, at the end of the day, they wore the silver medal that they had won with pride, and it is just the beginning of something special in Indian squash. India have won its most medals in the shooting range in this year's Asian Games. What happened on Sunday? Vidushi Vats with the report.
2: Starting with the women's trap competition, Neeru Dhanda continues to be one of the standout performers for India. She's currently sitting at number one in the individual standings, hitting 48 out of 50 targets. There is also good news in the team competition. The Indian women's trap team has finished day two in second position, keeping themselves firmly in medal contention as the event moves towards its final stage. Ashma Ahlawat is currently placed 16th individually. Moving to the men's trap event, Kainan Chennai made a brilliant start, producing a perfect opening round by hitting all 25 targets. He followed that with 22 in the next round and is currently placed 11th individually. Shapath Bhardwaj is currently in 22nd position, while the Indian men's team finished day one in 7th place in the team standings. And now, moving from trap to pistol, the Indian women have completed the precision qualification in the 25-meter pistol event. Hesha Singh is leading the Indian challenge at this stage. She finished the precision qualification with 290 points, putting her in 6th position. Rahi Sarnobat and Manu Bhakar are next for India, both finishing on 287 points. Rahi is currently placed 15th, while Manu is at 16th. Importantly, this is not the end of the 25-meter pistol competition. There is still more action to come, with the Indian trio looking to build on these scores as the event progresses.
0: दूसरी तरफ हॉकी के मैदान में भारतीय टीम का विजय रथ जारी रहा। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। महिला टीम ने सिंगापुर के खिलाफ 7-0 से जीत पा इस बात को सुनिश्चित किया कि वो ग्रुप स्टेज पर अजय रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अपना ग्रुप स्टेज कैंपेन अंत करे। अब सेमीफाइनल में सामने होने वाली है दक्षिण कोरिया। कुछ इसी तरह के संकेत आर्चरी रेंज से भी देखने को मिले।

0: हैं वे दोषी बताते हैं।
1: इन द मेंस रिकर्व टीम क्वार्टर फाइनल धीरज नीरज एंड यशदीप प्रोड्यूस्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट चाइना विनिंग 5-2 टू बुक देयर प्लेस इन द सेमीफाइनल्स। द वुमेन्स रिकर्व टीम ऑफ अंकिता कुमकुम एंड कीर्ति डिफीटेड चाइनीज ताइपे 6-0 इन देयर क्वार्टर फाइनल टू मार्च इनटू द लास्ट फोर। एंड इंडियाज मिक्स्ड रिकर्व टीम ऑल्सो मेड इट थ्रू। धीरज एंड कुमकुम हैव बीन क्लिनिकल थ्रू आउट द नॉकआउट स्टेज। दे बिगैन विद अ 6-0 विक्ट्री ओवर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द राउंड ऑफ 16 एंड फॉलोड दैट अप विद अनदर कमांडिंग 6-0 विन ओवर वियतनाम इन द क्वार्टर फाइनल एंड नाउ हैव अ सेमीफाइनल अगेंस्ट जापान टू लुक फॉरवर्ड टू। सो इन रिकर्व इंडिया हैज 3 टीम्स थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। द मेन्स टीम विल फेस ईरान, द वुमेन्स टीम विल टेक ऑन चाइना एंड द मिक्स टीम विल फेस जापान। दीज 3 रिकर्व सेमीफाइनल्स आर स्केड्यूल्ड फॉर अक्टूबर 2nd। बट द गुड न्यूज फ्रॉम इंडियन archery does not stop there. The compound teams have also delivered across the board, with India reaching the semi-finals in the men's, women's and mixed team events. In the men's compound team quarter-final, Sahil Ganesh and Kushal edged past Bhutan 235-232 in a closely fought contest. The women's compound team of Chikita, Jyoti and Pritika also booked their semi-final place, defeating Kazakhstan 233-230. And there was another impressive performance in the compound mixed team event by Chikita and Sahil, who first defeated Mongolia 161-46 in the round of 16 before overcoming Kazakhstan 159-154 in the quarter final. They are now through to the semi-finals, where they'll face Thailand. The compound men's and women's team will both face South Korea in the semi-finals. These 3 compound semi-finals are scheduled for September 30. All in all, it has been an absolutely fantastic day for Indian archery.
0: हालांकि बैडमिंटन कोर्ट से हताश करने वाली खबर है, मोहम्मद शाहिद आजमी से जानते हैं।
2: एशियाई खेलों में बैडमिंटन के लिहाज से भारत के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में भारत के चारों मुकाबले हार के साथ समाप्त हुए और इसी के साथ बैडमिंटन में भारत की पदक की चुनौती भी खत्म हो गई। महिला एकल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को चीन की विश्व नंबर 4 और ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था, इसके साथ समाप्त हो गयी।
0: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
3: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके उन मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
0: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
1: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
0: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की।

0: और एशियाई खेलों में महिला वेटलिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर नवे स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में नवे स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक हॉन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गोएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
2: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स निर्मामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ईयर ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, four Indian Kurash athletes in action today and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
2: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुभाव लेकर आलोक।
3: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जय सूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर है। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसू राउंड वन में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरे ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 9वें पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
4: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी भी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनिस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स

छाया गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं। दोनों संस्करणों को हमने किसी मोड़ पर जोड़ दिया था आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए। फिल्मों के नाम आप

फिल्म मेरे महबूब, शकील बदायूनी, नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है।

0: संगीत के साधक
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

आहुकार से दुश्माना है जिंदगी।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आग उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC जोस सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर

हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के

होकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: silver medal in the women's long jump at Aichi Nagoya in Japan today. Sarvesh Kushare won silver medal in men's high jump. Currently, India is at the 12th position in the medal tally with a total of 37 medals, including 4 gold, 16 silver and 17 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह आपकी सेवा में एक बार पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।